0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य

FM 106.9 MHz पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आज रविवार है, शक सम्मत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 MHz FM बैंड पर। प्रातः के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री

0: की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और बीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 MHz FM बैंड पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
2: वंदन वार।

Chintan. किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होंगी। चुभन धातु में नहीं वरन बेड़ियों में होती है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 184। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें का भाग 8। कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग अनुजा जोकरकर, तबले पर संगत दी है यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनव ने। इस कार्यक्रम का निवेदन किया ममता सिंह ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर हम है राही प्यार के, और उसके बाद सुनिए 8:00 समाचार प्रभात। त्रिवेणी कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2:00। आलेख और स्वर शेफाली कपूर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार।

कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार पंकज मलिक पर। इस कार्यक्रम को पुनः सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। आज सुनिए विविधा कार्यक्रम दिन में 11 बजे और दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार। दिन में 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल और दिन में 1 बजे तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के साथ। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और आपको भी हमारी इबारत का इंतजार जरूर होगा, तो जुड़िएगा इस कार्यक्रम में फेसबुक कमेंट्स द्वारा। दोपहर 2:15 पर सुनिए दोपहर के समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत यानी कि आपके द्वारा भेजे गए खतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज दिन में 3 बजे। आज दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद पोस्टमैन का भाग 2। अनुवाद हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम, निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय दोपहर 4 बजे। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर और ये कार्यक्रम चलेगा शाम 6:30 तक, लेकिन बीच में होंगे 6 बजे हिंदी में समाचार। झरोखा कार्यक्रम झरोखा आप सुन सकेंगे शाम में 6:30 पर, जिसमें आपको दी जाएगी जानकारी शेष कार्यक्रमों की। संध्या रंजन कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:35 और शाम 7 बजे विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद से। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज बांसुरी वादक पारसनाथ। 7:45 होगा इस कार्यक्रम का समय। हवा महल के अंतर्गत सुनिए हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की, लेखन कल्पनाथ सिंह, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे और छाया गीत कार्यक्रम का समय होगा रात 10 बजे, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम होगा रात 10:30 और रात 11 बजे, सुनिए विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब श्री रामचरित मानस गान का भाग 184 प्रस्तुत है।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाएं।

दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थी। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायु वेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कल्पना जी, आज की इस कड़ी में हमें

0: बताइए सबसे पहले कि बंदिशें तैयार करने में विषयों का चुनाव किस तरह से किया जाता है और ज्यादातर किन भाषाओं में बंदिशें तैयार की जाती हैं?
1: जी, भाषा तो अक्सर हिंदी, अवधी, ब्रिज बोली में अधिकतर पाई जाती है। कुछ कुछ राजस्थानी, बिहारी और मराठी भाषा में भी कई बंदिशें बनाई, पंजाबी में बहुत सारी बंदिशें बनाई गई। तो उस स्थान का भी असर होता है बोली पर
0: जी।
1: तो भाषा बोली भी अलग अलग थोड़ी हर एक कलाकार के आसपास के वातावरण के हिसाब से बदल जाती है। और उसके साथ साथ विषय जो है वो भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति से संबंधित वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, उत्सवों का वर्णन और गायन वादन में जो महत्वपूर्ण मूल्य है उनके बारे में भी कई बंदिशें बनी हुई है
0: जी।
1: तो ऐसे हर कलाकार के बंदिश बनाते समय जो आगरा जयपुर घराने की गायकी
0: जी।
1: आपके गायन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपने भी कई रचनाओं का निर्माण किया हुआ है
0: जी।
1: तो आज कुमुदिनी जी ने बनाई हुई राग बिलास खानी तोड़ी में मैं एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तीन ताल में बंधी हुई ये बंदिश है
0: जी, जी।
1: कैसे समझाऊं? बिलास खानी तोड़ी, इस नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि ये राग तोड़ी का ही प्रकार होगा। इसका थाट जो है भैरवी थाट है, क्योंकि इसमें अधिकतर स्वर भैरवी के ही लगते हैं। इसके आरोह में मध्यम और अवरोह में पंचम वर्जित है, इसलिए इसकी जाति शाड़व शाड़व है। तोड़ी अंग को ध्यान में रखकर मेंड के प्रयोग से ही यह राग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और शुद्ध मध्यम के प्रयोग से भूपाल तोड़ी से भिन्न हो जाता है। और दैवत प्रमुख स्वर या वादी स्वर हम कह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर राग है, प्रातःकालीन राग है। इसका चलन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ
0: जी।
1: इसके आरोह में मणि वर्ज है और अवरोह में पंचम वर्जित है। इसका चलन वक्र रूप से जाता है जो मैं अब आपको बताती हूँ।

0: वाह, कैसे समझाऊं मानत नहीं मोरा जियरवा। बड़ी सुंदर रचना थी और बड़े सुंदर अंदाज में आपने प्रस्तुत किया, यूं कहें कि मोहित कर लिया अपने गायन से। अब बताइए हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगे आप?
1: अब कुमुदिनी जी की आवाज में उन्हीं की बनाई बंदिश राग भैरव में प्रस्तुत करते हैं। ताल तीन ताल एवं शब्द है शंभो गिरिजापति।

अब आपके सामने राग भीम पलासी में एक बंदिश हमारे भाग आज जागे कुमुदिनी जी की आवाज में प्रस्तुत है।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग। संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत स्वीकार कीजिए। नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं डॉक्टर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है पंकज मलिक ने, संगीत से सजाया है पंकज मलिक ने और गीत के बोल लिखे हैं आरजू लखनवी, AH शोर ने।

आज महान गायक और संगीत निर्देशक पंकज मलिक की जयंती पर उनके कुछ सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आज उनकी मधुर धुनों को याद करते हुए जिन्होंने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी, तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत कपाल कुंडला से, आवाज और संगीत पंकज मलिक का।

0: एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मंजिल फिल्म का ये गीत, आवाज पंकज मलिक की, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरसी बारोल ने।

आरसी बोराल का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना और अब भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक वक्त है एक अंतराल का।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। श्रोताओं, आइए आपको बता दें अपने आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

आज प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुनेंगे 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा घरेलू गैस के विकल्प। साथ ही इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक सेगमेंट फिल्म म्यूजिक एंड मेलोडी। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपके संदेश आपके गीत आज प्रातः 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे आसपास से जुड़ी समसामयिक जानकारियों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातें आसपास की। इस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय होगा जल बचाएं जीवन बचाएं।

अवधि लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे 12:30 पर। सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो अयोध्या दोपहर 1:00। 1:30 पर आप सुनेंगे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। 2:30 पर आज बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल जगत। इस कार्यक्रम में आज बच्चे सुनेंगे चर्चा लू से करें बचाव और खाली समय का करें सदुपयोग। साथ ही बच्चे सुनेंगे समृद्धि सीट से उनकी वार्ता विषय होगा मेरी वाली गर्मी की छुट्टी। रोचक जानकारी में आज का विषय होगा भारत की जनगणना और प्रेरक व्यक्तित्व के अंतर्गत बच्चे जानेंगे आचार्य महावीर द्विवेदी और रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व के बारे में। हमारी वशोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी आज शाम 5:00। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा योग और तनाव प्रबंधन। ज्ञान विज्ञान में हमारा आज का विषय होगा फ्रायोस्फेरिक विज्ञान। संस्था सेगमेंट में आज आप जानेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे 5:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे 6:10 पर। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे 6:45 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा शिक्षा है अनमोल रतन। साथ ही इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्री रंजीत त्रिपाठी सहायक विकास अधिकारी कृषि से की गई भेंटवार्ता। विषय होगा मृदा स्वास्थ्य संवर्धन और खरीफ फसलों की तैयारी। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शेर और गीत आप सुनेंगे आज रात 8:00।

पंद्रह मिनट पर कार्यक्रम खेल खिलाड़ी आप सुनेंगे रात 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन्फॉर्मेशन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस, कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 7376804090, दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 100.9 MHz FM बैंड पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: तीसरा धर्म है मनन करना। मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू। आज आयोजित होगी परीक्षा का दूसरा चरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
3: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या

0: विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में कल जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहां एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर और गोरखपुर जिले में कल मीडिया के लोगों को स्वजनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजनौर की जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है, ये दिन के रूप में तीन दिन का कार्यक्रम है। आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मजबूर करें।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृत काल में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और तहसीलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
3: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल से शुरू हुई। पहले दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आज परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में 1-1 प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाएगा।

0: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साहस और राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्चा और दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें तीनों लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में दो अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने कल ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋषभ सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक वाद, विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: भक्ति संगीत के कार्यक्रम अमृत कलश के आरंभ में आई सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचना।

आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग,
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
5: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
4: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
5: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
4: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
5: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
4: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
5: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
6: आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें। कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें। आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल

0: अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
1: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
0: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
1: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मामकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।

0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुँचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े।

0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
2: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
4: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
2: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम

0: नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित हैं। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता और अर्हताएं इस प्रकार हैं। आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर का संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 GST के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थी को ₹266 GST के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सोमवार से शुक्रवार तक प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: आल। कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम के आरंभ में आई सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आपके संदेश
3: संदेश से आते हैं,
2: आपके गीत
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के

नमस्कार, खुश आमदीद, शुभ स्वागतम, अभिनंदन आपका उस सुबह में जहां हम कोशिश करते हैं आपके हर पल में ऐसा रंग भरने की जिससे आपका दिन खुशगवार और बेहतरीन हो सके। जी हां, हमारी इस कोशिश का नाम है प्रणाम अयोध्या। सीख ले फूलों से गाफिल मुद्दुआए जिंदगी, खुद महकाना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। दोस्तों, आज के आधुनिक जीवन में घरेलू गैस यानी LPG रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग लगभग हर घर में किया जाता है। ये सुविधाजनक, तेज और अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, ईंधन की बढ़ती कीमतें, प्राकृतिक गैस की दूसरे देशों पर निर्भरता और देश में प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता की वजह से घरेलू गैस पर अत्यधिक निर्भरता चिंता का विषय बनती जा रही है। इसके अतिरिक्त गैस रिसाव जैसी दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। ऐसी स्थिति में घरेलू गैस के विकल्पों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि ऊर्जा के अन्य सुरक्षित, सस्ते और पर्यावरण अनुकूल संसाधनों को अपनाया जा सके। घरेलू गैस के प्रमुख विकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बिजली से चलने वाले उपकरणों का है। आजकल इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक कुकर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये उपकरण बिजली की सहायता से भोजन पकाते हैं और इनमें धुआं या गैस रिसाव का खतरा नहीं होता। इनका उपयोग करना आसान होता है और ये समय की बचत भी करते हैं। जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता अच्छी है, वहां ये घरेलू गैस का एक अच्छा विकल्प सिद्ध हो रहे हैं। सौर ऊर्जा भी घरेलू गैस का एक प्रभावी और पर्यावरण हित ऐसे विकल्प है। सोलर कुकर सूर्य की किरणों की सहायता से भोजन पकाते हैं। इसमें किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, जिससे खर्च भी कम होता है और प्रदूषण भी नहीं फैलता। भारत जैसे देश में जहां वर्ष के अधिकांश समय पर्याप्त धूप रहती है, और सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत लाभकारी हो सकता है। सरकार की मंशा के अनुरूप अगर समाज इस दिशा में अधिक प्रयास करे तो सौर ऊर्जा भविष्य में घरेलू ईंधन का प्रमुख साधन बन सकती है। बायोगैस भी घरेलू गैस का एक उपयोगी विकल्प है। ये गोबर, जैविक कचरे और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। इसमें भोजन पकाने के साथ साथ जैविक खाद भी प्राप्त होती है, जो खेती के लिए उपयोगी होती है। बायोगैस सस्ती, स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। सरकार भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सौर ऊर्जा, बायोगैस और ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बस अब लोगों को जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वे घरेलू गैस के विकल्पों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके। घरेलू गैस के विकल्प केवल आवश्यकता ही नहीं, बल्कि भविष्य की मांग भी है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे साधनों को अपनाना चाहिए जो सुरक्षित, सस्ते और प्रदूषण रहित हों। अगर हम समय रहते वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

0: आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
2: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
2: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
3: मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
4: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
5: और व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
7: आपका हमनामा, आपका मेजबान, आपका हमदम, आपका दोस्त हाजिर है आज का खास सेगमेंट लेकर, जिसका नाम है फिल्म म्यूजिक एंड मेलोडी।

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को बहुत सी फिल्में रिलीज होती हैं। इस शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म दादी की शादी, ये एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जिसमें हास्य भावनाएं और पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट को खूबसूरती से पेश किया गया है। फिल्म में नीतू कपूर, कपिल शर्मा और रिद्धिमा कपूर साहनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। ये फिल्म पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों की मिठास और नई सोच को हल्के फुल्के अंदाज में दर्शाती है। निर्देशक आशीष आर मोहन की निर्देशित ये फिल्म दर्शकों को हंसी के साथ भावनात्मक संदेश भी देती है।

मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश ने हिंदी सिनेमा में बहुत कम मौके पर एक साथ गीत गाए, लेकिन जब भी उनकी आवाजें एक साथ आईं, वो गीत यादगार बन गया। ऐसा ही एक गीत है फिल्म अमर अकबर एंथोनी का। इस गीत में तीनों महान गायकों के साथ लता मंगेशकर की मधुर आवाज भी शामिल है। गीत को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। ये गीत अपनी मधुर धुन, रोमांटिक भावनाओं और महान गायकों की संगत की वजह से आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। आइए सुनते हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म का वही गीत, जिसमें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है।

दोस्तों कैफी आजमी उर्दू साहित्य के मशहूर शायर और हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध गीतकार थे, जिन्होंने अपनी जज्बाती कलम से हिंदी सिनेमा को शानदार गीत दिए। उन्होंने अपने गीतों और संवादों में प्रेम, इंसानियत, सामाजिक समानता को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। उन्होंने बहुत सी फिल्मों के लिए गीत और पटकथा लिखी, जिनमें कागज के फूल, हकीकत और हीर रांझा बेहद खास है।

जिनमें कागज के फूल, हकीकत और हीर रांझा बेहद खास है। उनके लिखे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। कैफी आजमी ने हिंदी सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उसे समाज और इंसानियत की आवाज बनाने का काम भी किया। उनकी पुण्यतिथि पर आइए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

दोस्तों आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख स्थानीय खबरों पर। प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर अयोध्या में स्थापित, जनपद के 500 से अधिक कारीगरों को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। 78 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में बनेगा अधिवक्ताओं के लिए बहुमंजिला चैम्बर भवन। अयोध्या जनपद में समाधान दिवस पर 103 में से 3 मामले सुलझे। जनपद अयोध्या में आयोजित लोक अदालत में 85,350 मुकदमे निस्तारित। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर 190 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 5 अंडरपास। ब्लैक स्पॉट के रूप में चयनित ये स्थान होंगे सोहावल के अरकुना, रानीमऊ, कूड़ा सादात, बेलसर और सट्टी चौराहा। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: प्रणाम अयोध्या।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस, कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी और जोड़ो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 7376804090। 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
4: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
5: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
4: हरी आई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
5: फोन नंबर 91-61-877-347।
6: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह बधाई हो,
8: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
6: हाँ दी नया मोबाइल।
8: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
6: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
8: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
6: प्रदीप
8: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
6: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
8: अच्छा
9: आरबीआई कहता है
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
11: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
12: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दोस्तों हाजिर हैं हम कार्यक्रम लेकर बेहद खास आपके संदेश आपके गीत। तो बगैर किसी ताखिर के आइए आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। ये पहला संदेश हम तक पहुंचा है गांव चौहलदा बागपत से। भेजा है इस संदेश को संजय ढींगिया और नमंग ढींगिया ने, और इस गीत की फरमाइश की है फिल्म वारिस से। तो आइए सुनते हैं फिल्म वारिस से आप सबकी पसंद पर ये गीत।

0: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए, सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम में आपके संदेश, आपके गीत के लिए अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, और इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी ग्राम गुदुनुपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से जया रावत, अजीता रावत, आशीष रावत, अभय रावत, अकुल रावत और इनके मम्मी पापा। तो पेश है आप सबकी पसंद पर यह गीत, फिल्म का नाम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
2: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
6: व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म खानदान से और इस गीत को सुनने की ख्वाहिश में आप सभी गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी थांदी डॉक्टर प्रियंका थांदी और डॉक्टर प्रशांत थांदी। तो पेश है आप सबकी पसंद पर यह गीत, फिल्म का नाम खानदान।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म फागुन से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी है हमें दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा ने। तो पेश है आप सबकी पसंद पर ये गीत, फिल्म का नाम फागुन।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं 1942 लव स्टोरी फिल्म से ये गीत पसंद आप सबकी। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवे शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, अश्विन शाह और राजेंद्र शाह। तो पेश है आप सबकी पसंद पर यह गीत, फिल्म का नाम 1942 लव स्टोरी।

फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के इस गीत के साथ ही हमारा आज का व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत अब समाप्त होता है।

0: आपके संदेश
1: संदेश से आते हैं
0: आपके गीत
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
0: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
3: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषण कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषण कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता और अर्हताएं इस प्रकार है। आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 GST के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को ₹266 GST के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सोमवार से शुक्रवार प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 MHz FM बैंड पर। प्रस्तुत है आसपास से जुड़ी समसामयिक जानकारियों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातें आसपास की।
6: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
7: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
8: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
7: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
8: और साथ में अपना नाम, पता
7: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
8: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
0: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
5: आपका हमनवा, आपका मेजबान, आपका हमदम, आपका दोस्त हाजिर है आपका बेहद खास आसपास से जुड़ी समसामयिक जानकारियों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है बातें आसपास की। इस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है जल बचाएं, जीवन बचाएं।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: दोस्तों, जल प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी और पेड़ पौधे सभी जल पर निर्भर हैं। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। वर्तमान समय में जल की कमी विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बनती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या, जल का अत्यधिक उपयोग और जल प्रदूषण की वजह से स्वच्छ जल की उपलब्धता लगातार घट रही है। अगर समय रहते जल

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
4: जल हमारे दैनिक जीवन का आधार है। पीने, भोजन बनाने, खेती करने, उद्योग चलाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है। कृषि प्रधान देश भारत में खेती पूरी तरह जल पर निर्भर करती है। जल के बिना अन्न उत्पादन संभव नहीं है। इसके अलावा जल पर्यावरण को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नदियां, तालाब और झीलें केवल जल के स्रोत ही नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और जीव जंतुओं के जीवन का आधार भी है। आज लोग जल का आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं। नलों को खुला छोड़ देना, वाहनों की धुलाई में अधिक पानी खर्च करना, अनावश्यक रूप से जल बहाना जल की बर्बादी है। दूसरी ओर कारखानों और घरों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों और तालाबों को प्रदूषित कर रहा है। इससे स्वच्छ जल की मात्रा दिन ब दिन कम होती जा रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन भी जल संकट का एक बड़ा कारण है। लगातार बोरिंग और ट्यूबवेल का प्रयोग से भूजल स्तर नीचे गिर रहा है। आज हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है।

हमें जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण के उपाय करने चाहिए। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बारिश का पानी व्यर्थ न बह जाए। घरों और विद्यालयों में पानी का सीमित उपयोग करना चाहिए। दांत साफ करते समय और कपड़े धोते समय नल बंद रखना चाहिए। पेड़ पौधे अधिक लगाने चाहिए क्योंकि वृक्ष वर्षा लाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। नदियों और तालाबों को साफ रखना भी हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है।

आज वर्तमान समय में युवाओं और बच्चों की भूमिका जल संरक्षण में महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे बचपन से ही पानी बचाने की आदत अपनाएं तो समाज में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। छोटे छोटे प्रयास मिलकर जल संकट जैसी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए हमें जल की हर बूंद का महत्व समझना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम आज जल बचाएंगे तभी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सच ही कहा गया है, जल है तो कल है। इसलिए पानी को पानी की तरह ना बहाएं, पानी को पैसे की तरह बचाएं।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का आसपास से जुड़ी समसामयिक जानकारियों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातें आसपास की अब समाप्त होता है। हमारा आज का विषय था जल बचाएं, जीवन बचाएं।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 10 बजने को हैं। आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।
2: पूज

0: चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
2: जी
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह।
2: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर

0: बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
1: जी, जी, जी.
0: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुने हैं या नाम रखिए, बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, पमिला नटराजन ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें.
1: वाह वाह
0: जी.
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी दादी?
0: पहला शो 1975 14 अप्रैल जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन.
1: हाँ, हाँ.
0: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया.
1: क्या बात है
0: जी.
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है,
0: मुहूर्त माना जाता
1: है. क्या बात.
0: हमारे एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे. हाँ. जिस दिन उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा.
1: क्या बात है
0: जी.
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी?
0: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ. जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था.
1: हाँ, हाँ.
0: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ. वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से. वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा. मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी, मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की. तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको? तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है. तो वो इतनी खुश हो गई. अच्छा, मुझे बोली अच्छा. तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाओगी. बहुत मजा आया उससे बच्चों से लेकर.
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
0: जी,
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फेहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये.
1: हाँ,
0: इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त.
1: बिल्कुल. तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी. आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है.
0: राइट.
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे. हाँ. वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो.
1: क्या बात.
0: आई लव दैट सॉन्ग. बहुत
1: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
0: ऐसे मैं मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी. अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए उसकी झलक उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम.
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए.

0: उर्मिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: मुंबई।
0: अच्छा, मुंबई मुंबई में
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई की
1: सब चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर आती
1: थी, सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा?
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को। जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट था। तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था। हाँ, दिल्ली में। हाँ। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत
1: शारदा
0: जी, जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जा रही थी।
0: हाँ,
1: तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
0: महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहले बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी
0: अच्छा,
1: फ्रेंड्स वगैरह थे।
0: हाँ,
1: साथ। बहुत मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर सके? जरूर

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती, पुरुष लोग
1: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट,
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं की।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, कभी पता नहीं चला। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गई।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है।
1: हाँ।
2: और 58 को शादी हो गई 16 साल की।
1: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
1: हाँ।
2: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: वो
2: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
1: हाँ।
2: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब जिजिक होती है कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
2: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
2: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी रुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या? हमने चलेगी,
1: दौड़ेगी,
2: जाऊंगी, कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा।
1: क्या बात।
2: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है,
1: जी जी,
2: उनका वहां इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके। अच्छा। गाने ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए,
2: मराठी में गाने थे।
1: जी जी।

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ
1: गए। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी,
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीका का।
0: हाँ।
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा। मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी। तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम। तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी, जी।
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको
0: जी, जी।
1: इतने बड़े बहुत ही बड़े सर, सब गायक कलाकार लेजेंड्स है, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है, इधर उधर ऐसा घूमते, बहुत अस्वस्थ रहते थे। और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार

0: गाने गा के ये लोगों को सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बार रफी साहब को।
1: किशोर दा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
0: ड्यूएट नहीं गाया,
1: नहीं गाया। अगर किशोर दा को याद करने के लिए कोई गीत सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: प्रस्तुत किया? लोगों ने बहुत नाम भी रखे, क्योंकि ये क्या है,
0: मतलब टीका टिप्पणी की, आप जो
1: टीका टिप्पणी की,
0: जी, जी, जी, जी.
1: वो मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई. उसकी वजह ये है कि लोगों का टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी.
0: अच्छा,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें.
0: जी, जी.
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं, तो लोग क्या, हाँ हाँ, वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है.
0: अच्छा.
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं. लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी. लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में. फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी.
1: लोगों ने कहा कि अब तू खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बंद के, इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस. अच्छा. कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए. तो मुझे उससे

0: मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं का, तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे, तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला वो दिख रही हो तो एक गाना में गाओ ना साथ में।
1: अच्छा।
0: मेरी सब सहेलियां मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता है।
1: क्या बात है।
0: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
1: सोशल मीडिया,
0: तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती हूँ।
1: क्या बात।
0: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो वो तुम तुम्हारा करके गाती हो। वो प्रमिला दादा का गाना लगता है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि लता भाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा भाई जो रेंज में उन, मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले
1: जी,
0: गाने
1: जी।
0: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक काली पांच काली एक तक जाती है। तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का। तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
1: क्या बात है
0: भेजे।
1: अच्छा।
0: कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके जी, साथ गाए, लेकिन बहुतर गाने मैंने ऐसे ही गाए मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है।
1: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो ऐसा भी हुआ?
0: नए में मुझे नहीं याद आता है। अच्छा। अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक का।
1: अच्छा।
0: मोह मोह के धागे,
1: मोह मोह के धागे दम लगा के हैशा, इस फिल्म
0: दम लगा के हैशा उसका
1: ये, लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: मोह मोह के है।
1: तो और इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं, किसी
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना है?
1: तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप।
1: नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं
0: गाऊं,
1: ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी
1: रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव,
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौबड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक, लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं है तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट। मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले
1: वो तो गाओ। नकल नहीं आती उसमें, लेकिन उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है, और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी जी,
1: वो क्यों करते थे इतना?
0: बिल्कुल
1: ऐसे गाते थे ना।
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नता की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र, तो मन्ना दा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: बड़ौदा में मन्ना दा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है, क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, तो फ्लैट लगेगा और भाव नहीं आएंगे उसमें। तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है, किसी के आवाज में, तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपने आवाज में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे आघात करते जाओ। अच्छा। और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी,
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में, बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी येशील सजणे सजणे माझ्याच पाठी।
0: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत बहुत। तीन बार हुआ टेक, चार बार हुआ, इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा। अन्ना बोले डरो डरो डरो, मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं, वो बराबर लाइन में।
0: क्यों ना इस गीत की एक झलक।

0: आप सुनवा दे हमें.
1: हाउस ऑफ बैम्बू.
0: जी जी.
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर. नंबर 54 द जिसे मॉड्यूलेशन.
0: हाँ हाँ.
1: कि उसके कम करना उससे ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है.
0: जी जी जी.
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर. हो बांबू से घर बांबू से दार बांबू ची जमीन पिवळी शार. बांबू से घर बांबू से दार बांबू ची जमीन पिवळी शार. बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला. झुलवित राहील पापा पापा तुला नि मला. नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर. नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर.
0: क्या बात है, बहुत सुंदर.
1: उनका तो क्या
0: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
1: जी जी.
0: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
1: हाँ.
0: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने.
1: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
0: बहुत सही.
1: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उस पे बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
0: वाह
1: बहुत अच्छा. थोड़ा सुना दो.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा
0: लिखावट।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं।

0: नफीस साहब के साथ।
1: नफीस साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ।
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
0: जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
0: जी जी,
1: हाँ
0: हंसते
1: जख्म
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का जी, बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा
1: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहाँ ही मिल गया,
0: क्या बात है,
1: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग।
0: क्या बात,
1: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए उनके, 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त रेजर वेजर कुछ ना आया, स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था, घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि यह सब अचानक आया, प्रीप्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका। और बहुत जल्दी इत्तला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे, वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ। उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे, तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है, वो मेरे लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
0: कितनी भाग्यशाली आप हैं,
1: बहुत बहुत। मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ। बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर इस प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
0: जी।
1: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के, उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
0: क्या बात, परिवार की बात चली है
1: जी।
0: तो आपकी अगली पीढ़ी में
1: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी शो में शुरू से, मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोल्स कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना, वो छोटी थी दोनों, तो उनका जाते उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए,
0: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते उन्होंने हुए
1: गाते देखा,
0: देखा
1: तो उन्होंने तो वो भी गाती थी और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कैसा क्यों आए ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे,
0: क्या बात,
1: बड़ी बेटी एकदम हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं,
0: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
1: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट
0: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
1: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलब चपलब उस पे डांस भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट गाने हम लोग, तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद,
0: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं।
1: अरे बापरे
0: रामलाल जी का कंपोजिशन है,

चेंजिंग द इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव मेड मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाई। और मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे। तो राज जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा गनन बहुत तारीफ करता है, चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते। मैंने कहा राजी अभी चार पांच दिन में सेंसर हो जाएगी, मैं प्रिंट आपको, नहीं नहीं नहीं मैं थिएटर पर देखूंगा। यूसुफ भाई से बोले भाई हम भी देखेंगे। बहरहाल मफहूम क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है, राजीव की संगम है, आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता है।

0: रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और
1: हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं मनीषा जी, कि हमें विविध भारती के माइक से बोलने का मौका मिलता है, हमें अपने श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का मौका मिलता है, हम अपने श्रोताओं के साथ अपना विविधा का खजाना, विविध भारती का खजाना बांट पाते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं।
0: और अमर जी, आज की इस विविधा को हमारे श्रोता याद रखेंगे इस उम्मीद के साथ। अब इजाजत लेते हैं क्योंकि अगली विविधा में क्या लेकर आना है इसकी भी तो तैयारी करनी है,
1: बस निकलते ही लग जाएंगे अपने काम में।
0: और इस वक्त तो ले लेते हैं इजाजत, तो आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड़बेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग अभिनेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1,200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल है, चित्रगुप्त का संगीत है।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त की संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर चिट्ठी।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: विजय कुमार की आवाज में आइए सुनते हैं निर्गुण।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

0: पर फोन करके हमारे पास एक श्रोता जुड़ भी चुके हैं, आइए बात करते हैं इनसे।
1: इलाहाबाद से सुना रहे हैं ना?
0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बात कर रहे हैं मैम,
0: कौशाम्बी से। सर अपना नाम बता दीजिए।
1: ग्राम गोरी।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये देश है मेरा मेहमानों का।
0: अच्छा ठीक है, तो हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं। और आपको कुछ कहना है, हमारे कोई संदेश देना है
1: क्या मैम?
0: आप और कुछ कहना चाहते हैं आकाशवाणी अयोध्या से? आप बहुत दूर से फोन मिलाए हैं।
1: हाँ हाँ मैम,
0: पहली बार कॉल लगी है क्या?
1: क्या? यस।
0: ठीक है, तो आप अपनी पसंद का गीत सुनिए अपने रेडियो सेट पर। थैंक यू सर, हमें फोन
1: कर दीजिए। सुना है ना आप?
0: क्या सर?
1: इलाहाबाद ट्रैवल्स सुना रहे हैं ना आप?
0: ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर, और ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है, जो कि पूरे देश में कहीं भी सुना जा सकता है।
1: ओके मैम, एक हर्ट्ज पर ना मैम, दो सौ मीडियम ना मैम, मीडियम।
0: आप हमारे स्टेशन का जो कोड है वो सुन लीजिए, 101.9, इस पर आप लगाएंगे तो आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र को सुन पाएंगे।
1: क्या मैम?
0: 101.9 और न्यूज ऑन 101.9 101.9।
1: अच्छा अच्छा मैम,
0: ठीक है, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम और एक बज रहे हैं स्टूडियो में प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या सजीव फोन इन कार्यक्रम। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्ते। आप अपना गाने की फरमाइश कर सकते हैं हमारे नंबर

0: हेलो अयोध्या कार्यक्रम में हमारे दूसरे श्रोता जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं इनसे। हेलो,
1: हाँ नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्ते। अभी आपने अपना नाम बताया था, मंजू जी, क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, हाउसवाइफ।
0: हाउसवाइफ हैं तो बहुत बड़ा काम है। वैसे आप ये बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज हमारे कार्यक्रम में?
1: आखिर क्यों का,
0: आखिर क्यों का कौन सा गीत?
1: दुश्मन न करे दोस्त ने यह काम किया है।
0: अच्छा, बस गाना अच्छा लगता है या कोई इंसिडेंस तो नहीं हो गया ऐसा कुछ?
1: नहीं, अच्छा लगता है गाना।
0: अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर गाना अच्छा लगने के लिए ही होता है। तो आप अपने रेडियो
1: जी
0: सेट पर अपने घर में अपने परिवार के साथ, आज संडे भी है तो अपने पसंद का गीत सुनिए।
1: नाम लेना चाहते हैं अपने लड़का लड़की का।
0: हाँ, नाम ले लीजिए।
1: लड़की का नाम पूजा, लड़का का नाम विनायक।
0: ठीक है, आपके बच्चे बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, भविष्य में बहुत नाम रोशन करें, यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे फोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: हेलो अयोध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। श्रोताओं, आपके फोन कॉल से हम अपना कार्यक्रम चलाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आपके फोन आते हैं। आइए, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं कॉल पे, इनसे बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? ज्ञानी नाथ पांडे। कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या करते हैं आप?
1: पढ़ते हैं, लिखते हैं।
0: पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। लिखने का शौक है आपको?
1: लिखते हैं, जब काम भी नहीं मिलते तभी लिख लेते हैं।
0: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी आदत है। कौन सा गीत सुनेंगे? अखियों से गोली मारी सुनना है। अच्छा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मे। गाना आपको अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: आप ही को अच्छा लगता है और भी बाकी लोगों को अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: तो ठीक है, आप सुनिए अपनी पसंद का गीत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: आप बहुत अच्छी लगती है।
0: अरे थैंक यू, और आपकी कॉल और आपकी आवाज भी हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही फोन किया करिए। नमस्ते।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते।

0: लाखों पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं। आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें, धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को रसायनों से मुक्त रखें ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: श्रोताओं आप कार्यक्रम सुन रहे हैं हेलो अयोध्या, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से हमारे श्रोता लाइन पर हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो, हाँ नमस्ते, अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं निवासीपुरा जेवर रोड से बोल रहा हूँ, जिला अयोध्या से।
1: अच्छा, अयोध्या से शाहिद जी बात कर रहे हैं, और बताइए शाहिद जी क्या हाल चाल है आपके?
2: जी हाँ बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक है, आप कैसी हैं?
1: हम भी बढ़िया हैं, आप लोगों के कॉल आते रहते हैं तो हम लोग और अच्छे हो जाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: जी मैम आज ये मदर्स डे है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई बढ़िया सा गाना सुना दीजिए।
1: हाँ आज मदर्स डे है, आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम उस शक्ति उस ममता उस करुणा को नमन करते हैं जिसमें पूरा संसार झुकता है ना। आप भी अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखते होंगे और सारे बच्चे अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखते हैं।
2: बिल्कुल हाँ।
1: तो आपको माँ से संबंधित गीत सुनना है?
2: जी हाँ कोई सुना दीजिए। और मैम आज मेरी कॉल पहली बार लगी है।
1: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई,
2: कार्यक्रम में मेरी पहली कॉल है आज।
1: अच्छा चलिए ठीक है, इसके लिए बधाई और हम आपको सुनाते हैं आज मदर्स डे के अवसर पर बहुत ही सुंदर सा गीत मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म दादी माँ से, तो सुनिए। थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ मनोज,
0: हाँ नमस्कार। आप हेलो अयोध्या में आपने फ़ोन किया है, बताइए कैसी हैं आप? कौन सा गीत सुनना है?
1: मुझे प्यार मिले।
0: अच्छा ठीक है, तो आप अपनी पसंद का गीत सुनिए, ज़िंदगी और तूफ़ान से मुकेश की आवाज़ में ये गीत है तो हम बजा रहे हैं, और आप अपने परिवार वालों के साथ मिलके सुनिए। हमें फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हेलो अध्याय कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। आज मदर्स डे था। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो अपनी हम लोग अपनी भावनाएं अपनी माँ के प्रति जरूर प्रदर्शित करें। माँ को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, बस चाहिए होता है कि उसके बच्चे उसके पास 10 मिनट 15 मिनट बैठ कर उनका हालचाल पूछें। तो इस सब चीज़ों का हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपनी माँ का सम्मान करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें। इसी इन्हीं बातों के साथ हेलो अयोध्या कार्यक्रम से मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, AYODHYAAKASHVANI@gmail.com।
0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में हम पढ़ते हैं संदेश, और उन संदेश में जो फरमाइशी गीत आते हैं उनको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद पर। पहला संदेश आया है अरविंद कुमार जी का फेसबुक पर। इन्होंने हमें संदेश भेजा है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। अरुण कुमार मालवीय लिखते हैं बेबी गढ़ी चौराहा वाराणसी से। सतीश अनेजा जी, जो कि हमारे बहुत ही रेगुलर श्रोता हैं, चंडीगढ़ से आपने लिखा है। शेख जियाउर रहमान जी ने लिखा है मुरादाबाद से। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी जी। नरेश मल्होत्रा ने पानीपत से भेजा है। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी का आया है राजस्थान से। राधेश्याम जी ने हमें संदेश भेजा है इंदिरानगर से। सुनील पाठक का संदेश आया है अलीगढ़ से। सुरेश जनेजा लिखते हैं मदर्स डे की इन्होंने बधाई दी है, आपको भी भाई मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और जलालाबाद वेस्ट से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। संजय ढिगिया जी लिखते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। जाकिर मंसूरी जी ने हमें संदेश भेजा है मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंशीकापुर से। यासीन अनजान का संदेश आया है गिरिडीह झारखंड से। राजेश कुमार वर्मा, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। आप सभी ने सुनना चाहा है जो गीत, वो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी रेडियो सेट पर शान की आवाज़ में।

विजय सुरलारकार ने हमें संदेश भेजा है मुताला महाराष्ट्र से। पंजाब जी नारवाड़ लिखते हैं, राजस्थान से। मसूर हुसैन का संदेश आया है सहारनपुर से। निसार सलेमानी हमें लिखते हैं संदेश, धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से। रंजानंद गांव छत्तीसगढ़ से सुहैलकर। आफताब अंसारी का संदेश आया है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। नरेंद्र सिंह पनवार लिखते हैं हैप्पी मदर्स डे, तहसील आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। आपको भी भाई हैप्पी मदर्स डे, हमें अपनी माताओं का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध है इस मामले में, जो कि माँ का बहुत ही सम्मान करती है। शंकरलाल जायसवाल जिला नांदेड़ एतला महाराष्ट्र से। रज्जाक मोहम्मद लिखते हैं राजस्थान से। दिवाकर खान ने हमें संदेश भेजा दिल्ली रघुवीरपुर नगर से। शिव चौहान का संदेश आया है बाबा कुटीर रायगढ़ से। गुंजन लाल ने हमें संदेश भेजा है दयापुर बाबली से। रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से। फार्गुन यादव ने हमें संदेश भेजा है संबलपुर कांकेर से। विनोद वानलेंकर रायपुर छत्तीसगढ़ से। नैन लाल साहू ने संदेश भेजा है अटल रेडियो श्रोता संघ सोमनी से। उमा सिंह लिखती हैं कि आज मदर्स डे के अवसर पर माँ से जुड़ा हुआ गीत सुनने की इच्छा है, तो आप हमें उससे संबंधित कोई गीत सुना दीजिए। उमा सिंह ने हमें संदेश भेजा है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। नीलू मेघा राजधानी रायपुर से। तो हम आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं रंग दे बसंती फिल्म का लता मंगेशकर और ए आर रहमान की आवाज़ में ये गीत।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म इजाजत से। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत को लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है आरडी वर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने, दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, रविंद्र कुमार कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, इंजीनियर फसल इमनान हयात कॉलोनी अरिया बिहार से, वेद प्रकाश ने हमें संदेश भेजा हनुमानगढ़ राजस्थान से, उदयपाल पाल ने हमको संदेश भेजा है महोबा बुंदेलखंड से, ओम प्रकाश राय का संदेश आया है कुटवा नारायणपुर से, प्रवीण श्रीमाली ने हमें संदेश भेजा है कंवर कॉलोनी बड़वा से, जगमोहन प्रजापति राजस्थान से, संजय कुमार साहू का संदेश आया पटियाला कोट कस्बा उंगेटी से, धीरज गुप्ता कमल सोहनेटी का संदेश है छपिया से, नाना लामसे ने हमें संदेश भेजा है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से, डीपी मल्होत्रा का संदेश आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: और श्रोताओं अब एक सूचना है, दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सम द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 7376804090 दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को 5:30 से 6 बजे के मध्य। दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता और अर्हताएं इस प्रकार हैं।

आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 5 वर्ष के 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को

खान ने अभ्यर्थी को 354 रुपए जीएसटी के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को 266 रुपए जीएसटी के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सोमवार से शुक्रवार तक प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना संपन्न हुई। कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में हम संदेश पढ़ते हैं। सोमदेव यादव शंकरपुर पोस्ट सावा जिला बदायूं से, अंकुर लाल ने भेजा है मंदिर वार्ड 11 पुराना शहर बरेली से, कमल जी ने संदेश भेजा है सतना एमपी से, मोहम्मद फरमान ने भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का गीत फिल्म गाइड से मोहम्मद रफी और शैलेंद्र की आवाज़ में।

0: दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम कुछ तुमने कहा अब यही संपन्न होता है। स्टूडियो की घड़ी में 2 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
0: गीतांजलि कार्यक्रम की पहली गजल सुनिए सलमा आगा की।

0: आबिदा परमीन की आवाज में आप सुन रहे हैं ये गजल, और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज, आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।

0: और भाई साहब क्या हाल है
1: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
1: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
2: इसी संदेश के साथ गीतांजलि कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

0: श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक

0: का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने

0: एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल जगत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161-877-347।
2: बोल बोल के थक गया,
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
2: चले
3: ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है।

0: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
1: बच्चों जय हिंद। आज एक बार फिर मैं आपकी दर्शना दीदी उपस्थित हूँ आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम बाल जगत में। प्यारे बच्चों, गर्मी का मौसम आते ही हम सबको आम, छुट्टियां और खेलकूद बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इसी मौसम में एक खतरनाक समस्या भी होती है, जिसे लू कहते हैं। लू लगना बच्चों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर आप सभी बच्चों के लिए। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सभी इसके बारे में अच्छी तरह जानें और इससे बचने का उपाय भी सीखें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लू क्या होती है, क्यों लगती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बच्चों, लू एक ऐसी स्थिति है जब बहुत ज्यादा गर्मी और तेज धूप के कारण हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। जब शरीर अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता तो लू लग जाती है। इसे अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। यह तब ज्यादा होती है जब हम लंबे समय तक धूप में खेलते या घूमते रहते हैं। जानते हो बच्चों, गर्मी के दिनों में सूरज बहुत तेज चमकता है और तापमान बहुत बढ़ जाता है। कई जगहों पर गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। ये हवाएं इतनी गर्म होती हैं कि शरीर को जल्दी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमें इस मौसम में खास सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, अगर किसी बच्चे को लू लग जाती है तो उसके शरीर में कुछ संकेत दिखाई देते हैं। कभी कभी बहुत तेज बुखार आ जाता है, सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं या वीकनेस लगती है, बहुत जल्दी थकान आ जाती है, पसीना आना बंद हो जाता है और कभी कभी बेहोशी या घबराहट का अनुभव होने लगता है। अगर आपको या आपके किसी दोस्त को बच्चों ये लक्षण दिखे तो तुरंत अपने बड़े लोगों को बताएं। बच्चों, अब सबसे जरूरी बात, हम लू से कैसे बच सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, खूब पानी पिएं। दिन भर में बार बार पानी पीना चाहिए। जब प्यास लगे तभी नहीं बल्कि बिना प्यास के भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। धूप में बच्चों बाहर जाने से बचें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर खेलने से आप सभी को बचना चाहिए। इस समय बच्चों सूरज सबसे ज्यादा तेज होता है। हल्के और ढीले कपड़े पहने। हमेशा बच्चों आप सभी कोशिश यही करें कि सूती यानी कि कॉटन के कपड़े और हल्के रंग के कपड़े पहने। इससे आपका शरीर ठंडा रहता है। ठंडी चीजें खाएं और पिए। जी हाँ बच्चों, आप सभी नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और रसीले फलों का सेवन कर सकते हैं। घर में अधिकतर आप कोशिश करिए कि ठंडी जगह पर रहें। सुबह शाम को ही खेलें, दोपहर में खेलने बिल्कुल भी ना जाएं। आप सभी बच्चे हमेशा पानी की बोतल साथ रखें। स्कूल जाते समय कैप पहने। बाहर खेलने से जाने से पहले पानी पी कर निकलें और माता पिता तथा अपने शिक्षकों की बातों को भी अवश्य सुने व उनकी बातों को माने। प्यारे बच्चों, लू एक गंभीर समस्या है, लेकिन अगर हम सब सावधानी रखें तो इसे आसानी से बच सकते हैं। हमेशा याद रखें, पानी पिए, धूप से बचें, हल्के कपड़े पहने और समय पर आराम करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो गर्मी का मौसम भी मजेदार और सुरक्षित बना रह सकता है। आप सभी बच्चे सावधानी रखो और स्वस्थ रहो। अच्छा बच्चों, हम सभी के साथ कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि हमारे पास करने को कोई खास काम ना हो। इसे हम खाली समय कहते हैं। जैसे स्कूल से आने के बाद छुट्टियों में या जब होमवर्क हमारा पूरा हो जाता है। बहुत से बच्चे इस समय को बिना सोचे समझे टीवी देखने, मोबाइल चलाने या यूं ही बैठे रहने में बिता देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी खाली समय का सही उपयोग करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना

0: सकते हैं। खाली समय बच्चों हमें आराम करने के साथ साथ कुछ नया सीखने का अवसर भी देता है। अगर हम सभी इस समय का सही उपयोग करें तो हम अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। खाली समय का सही उपयोग करने से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन हम खाली समय का सही उपयोग अगर नहीं करते हैं बच्चों, तो यह समय व्यर्थ चला जाता है। बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना, घंटों टीवी देखना, बिना किसी उद्देश्य के समय बिताना, आलस करना, ये आदतें हमें कमजोर बना सकती है और हमारे भविष्य पर भी असर डालती है। बच्चों, अब सबसे जरूरी बात, हम अपने खाली समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। खाली समय में आप कहानियां पढ़ सकते हैं, ज्ञानवर्धक किताबें या कॉमिक्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इससे आप भाषा और ज्ञान दोनों के बारे में और विस्तार से जानते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। आप ड्राइंग या पेंटिंग कर सकते हैं, डांस, सिंगिंग या कोई न्यू गेम भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर की आप कोई भाषा भी सीख सकते हैं। बच्चों, खेलना भी जरूरी है। आप घर के बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इससे हमारा मन तो खुश होता ही है, शरीर भी स्वस्थ होता है। पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना भी एक अच्छा काम है। जो बच्चे अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। कई महान व्यक्तियों ने अपने खाली समय का सही उपयोग करके सफलता हासिल की है। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ नई चीजें सीखी और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। प्यारे बच्चों, खाली समय हमारे जीवन का बहुत कीमती हिस्सा होता है। हमेशा याद रखें, समय बहुत कीमती है। इसका सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अगर आप आज से ही अपने खाली समय का सदुपयोग करेंगे तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो बच्चों, इन महत्वपूर्ण बातों के बाद कार्यक्रम में अब बारी है आप सभी के लिए वार्ता की। तो आइए सुनते हैं समृद्धि सेठ से वार्ता, मेरी वाली गर्मी की छुट्टी।
1: विद्यार्थी जीवन में छुट्टियों का बहुत महत्व होता है और इनमें से गर्मियों की छुट्टियां सबसे लंबी और प्रिय होती हैं। वार्षिक परीक्षा के तनाव के बाद ये छुट्टियां हमें शारीरिक और मानसिक विश्राम प्रदान करती है। हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों की छुट्टियों का मुझे बेसब्री से इंतजार है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब स्कूल बंद होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि तब मुझे सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार नहीं होना पड़ेगा और ना ही भारी स्कूल बैग उठाना पड़ेगा। इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में मैंने तय करूंगी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दूंगी। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर पार्क में टहलने जाऊंगी। दोपहर के समय जब बाहर बहुत धूप होगी तब मैं घर के अंदर रहकर शतरंज और कैरम जैसे खेल खेलूंगी और शाम को अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने भी जाऊंगी। रात को मैं अपनी पसंदीदा कहानियां भी पढ़ूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिछली गर्मियों की छुट्टी में मैंने क्या क्या किया था। मई के महीने में जब गर्मी अपने चरम पर थी तब मेरी माँ ने सपरिवार शिमला जाने की योजना बनाई थी। हम सभी बहुत उत्साहित थे क्योंकि पहाड़ों की ठंडी वादियों में समय बिताना किसी सपने जैसा लग रहा था। हम अपनी तैयारी के साथ पहाड़ों की रानी शिमला जाने के लिए रेलगाड़ी से रवाना हो गए थे। अयोध्या से शिमला पहुंचने में हमें 26 घंटे लगे। शिमला पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंकों ने हमारा स्वागत किया। वहां का अनुभव अद्भुत था। यह देखकर तो मुझे एक शायरी याद आ गई। इन फल हवाओं का मिजाज कुछ और है, शिमला की इन वादियों का अंदाज कुछ और है। पहाड़ों की गोद में बसा है यह हसीन शहर, यहाँ की हर ढलान पर सुकून का शोर है। इसके बाद हम अपने शिमला के प्रसिद्ध मॉल रोड पर सैर की और वहाँ का स्वादिष्ट खाने का आनंद भी लिया। हम शिमला के पास कुफारी भी गए, जहाँ मैंने पहली बार घुड़सवारी की थी। वहाँ की हरियाली और ऊँचे ऊँचे चीड़ के पेड़ मन मोह रहे थे। कलका से शिमला के बीच टॉय ट्रेन का सफर सबसे रोमांचक था, जो सुरंगों और खूबसूरत वादियों से होकर गुजरती थी। मेरा तो दिल ही खुश हो गया था। यहाँ सब

0: इतना खूबसूरत और अच्छा था कि मुझे एक और शायरी याद आ गई। शिमला की वादियों में खो जाने को जी चाहता है, पहाड़ों की गोद में सो जाने को जी चाहता है। वो मॉल रोड की रौनक, वो जाखू की ऊंचाई, हर मंजर को आंखों में बफा लेने को जी चाहता है। घूमने के साथ साथ मैंने अपनी रचनात्मकता पर भी पूर्ण ध्यान दिया। मैंने पहाड़ों के सुंदर दृश्यों को अपनी चित्रकारी की पुस्तक में उतारा, साथ ही मैंने रोज डायरी लिखने की आदत भी डाली, जिसमें मैं अपने यात्रा के हर पल को दर्ज करती थी। जब मैं और मेरे परिवार वाले शिमला यात्रा करके वापस घर आए, तो हम सभी शिमला यात्रा से काफ़ी थक गए थे। मेरी माँ ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बाहर से मंगवाया। सभी ने चाय नाश्ता करके विश्राम किया। फिर मेरी माँ ने सभी के लिए रात का भोजन तैयार किया। सभी ने रात का भोजन खा पी कर अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए और माँ भी अपना खाना खाकर शयन कक्ष में सोने के लिए चली गई। अगली सुबह हम अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गए थे। शिमला यात्रा से वापस आकर मैंने अपने विद्यालय का गृह कार्य धीरे धीरे करके पूरा कर लिया था। शिमला की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक याद बन गई थी। प्रकृति के करीब रहकर मुझे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। इन छुट्टियों ने मुझे पढ़ाई के लिए पूरी तरह तरोताजा कर दिया था। अब मैं आप सभी को मेरी आने वाली इस गर्मी की छुट्टियों में मैं क्या क्या करूँगी इसके बारे में बताती हूँ। इन गर्मियों की छुट्टियों में मैं वाटर पार्क जाने के बारे में सोच रही हूँ। आने वाले 2 सप्ताह के बाद गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मैं अपने परिवार वालों के साथ वाटर पार्क जाऊँगी। गर्मी के मौसम में वाटर पार्क जाने का आनंद ही कुछ और है। मैंने मोबाइल में देखा है कि लोग वाटर पार्क में फ्लाइट पर कैसे फिसलते हैं, और फ्लाइट पर फिसलता देख ऐसा लगता है कि वो फ्लाइट को कितना एंजॉय करते हैं। इसीलिए मैंने वाटर पार्क जाने का मन बनाया। मेरी माँ ने सिखाया है कि किसी भी जगह जाकर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए।
1: Hey girls!
2: चाहिए
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
6: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
5: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
6: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
5: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
6: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
5: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
5: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: प्यारे बच्चों, इस संदेश को सुनने से पहले आपने सुना समृद्धि सेठ से वार्ता मेरी वाली गर्मी की छुट्टी। बच्चों, कार्यक्रम में अब बारी है आपके लिए रोचक जानकारी की। रोचक जानकारी में बच्चों आज हम जानेंगे भारत में जनगणना के बारे में। बच्चों, भारत में जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से देश की जनसंख्या, उसकी विशेषताएं और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। बच्चों, जनगणना का अर्थ है देश के हर व्यक्ति की गिनती करना और उसके बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। यह कार्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे पता चल सके कि देश में कितने लोग रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं। तो जानते हो बच्चों, भारत में पहली बार जनगणना का प्रयास 1800

72 में किया गया था, लेकिन नियमित रूप से हर साल 10 साल में जनगणना शुरू हुई 1881 से। तब से लेकर आज तक हर दशक में जनगणना होती आ रही है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि जनगणना क्यों जरूरी है, तो बच्चों सोचो, अगर किसी स्कूल को यह नहीं पता कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या वह सही संख्या में किताबों और बेंचों की व्यवस्था कर पाएगा? नहीं ना? तो ठीक उसी तरह सरकार को भी यह जानना जरूरी होता है कि देश में कितने लोग हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं। जनगणना से सरकार को मदद मिलती है नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने में, लोगों के लिए रोजगार योजनाएं बनाने में, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि जनगणना से बच्चों का क्या संबंध है, तो सुनो, इससे आप सभी के लिए बेहतर स्कूल बन सकते हैं, खेल के मैदान और पुस्तकालय बन सकते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए योजनाएं बनती हैं, मिड डे मील जैसी योजनाएं बेहतर होती हैं। बच्चों, जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि यह देश के विकास की नींव है। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि कहां पर क्या जरूरत है और कैसे देश को बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चों, जब अगली बार जनगणना हो और कोई अधिकारी आपके घर आए, तो समझ जाना कि आप भी इस बड़े और महत्वपूर्ण काम का हिस्सा बन रहे हो। तो बच्चों, रोचक जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में बारी है आपके मनोरंजन की। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जानवर से, और इस गीत को आवाज दी है सुनिधि चौहान और उदित नारायण ने।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बच्चों, इस छोटे से विज्ञापन के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कार्यक्रम में अब बारी है आप सभी के लिए जानने की आज के प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। बच्चों, हमारे देश भारत में बहुत से महान लोग हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, मेहनत और प्रतिभा से समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही दो महान नाम हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और रविन्द्रनाथ टैगोर। एक ने हिंदी भाषा को सुंदर और सशक्त बनाया तो दूसरे ने अपनी कविताओं और गीतों से पूरे विश्व को प्रभावित किया। बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उस समय हिंदी भाषा उतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से लिखते थे जिससे भाषा में एक रूपता नहीं थी। बच्चों, द्विवेदी जी को हिंदी भाषा का सुधारक कहा जाता है। वे सरस्वती नाम की एक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक भी थे। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कई नए लेखकों को आगे बढ़ने का मौका दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन में अध्यापन कार्य किया। वहां उन्होंने छात्रों को साहित्य और संस्कृति की शिक्षा दी। इनकी लेखनी में गहराई, विद्वता और सहजता का अद्भुत समन्वय मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अशोक के फूल, कुटज हिंदी साहित्य की भूमिका प्रमुख हैं। बच्चों, द्विवेदी जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। बच्चों, रविन्द्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक समृद्ध और सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, संगीतकार और चित्रकार थे। उन्होंने बंगाली साहित्य को नई दिशा दी और उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह की बात करें तो गीतांजलि, मानसी, गीताली और उपन्यास की बात करें तो गोरा, घरे बायरे, चोखेर बाली और टैगोर की रचनाओं में प्रकृति प्रेम, मानवता और आध्यात्मिकता का

सुंदर समन में मिलता है। बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जनगणमन लिखा। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा। तो बच्चों, इन्हीं बातों के साथ ही आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लाडला से। गीत को आवाज दी है उदित नारायण और ज्योत्सना ने।

0: बच्चों, इसी गीत के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अपनी दर्शना दीदी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: मन चाहे की
2: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूरका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को। याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बश्की का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक पीएस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं

0: तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
1: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
0: मेरी बात याद रखोगे ना?
1: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
2: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
3: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
2: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
3: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
2: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है। अबे सच कह दे, नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
3: है, बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
2: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
4: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ। उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
2: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने ये भी बताया था कि उसने धन कहाँ गाड़ रखा है?
3: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
2: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
3: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा। अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
2: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है। और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भिड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूँ बाबूजी, चाहता हूँ। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर माँ के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उन्हीं को दारुण दुख से तड़पा।

0: माँ जी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदल कर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिव कामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है, सोच लो। ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
1: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
0: कौन? कुमार स्वामी, आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
1: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
0: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
1: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
0: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
1: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
0: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
1: कंद स्वामी कौन?
0: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
1: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
0: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
2: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
0: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो, तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेस बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mother! Mummy! Where are you? Oh, silly old lady!
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई है, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है।

0: उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
1: What nonsense? ये क्या कह रही हो?
0: बस बस बंद कीजिए ये नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
1: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावटी नहीं, असली मूछें हैं, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
0: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
1: कौन? ओहो सिंगाराम, हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
1: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाकखाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
1: जमीन में गड़ा धन? अंकल सिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
1: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहां जाता है, पहले बता।
1: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम तो ले।
1: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है?
0: तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी
0: है? ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसी श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसी ने ही चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

क्या कहा माँ जी, ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर

0: आइए पोस्ट मास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस गंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है।
1: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर

0: इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
1: देखो गंदे स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
0: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
1: मैं क्यों माफ करूँ? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
0: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
1: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
1: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
0: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारिक, चमलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती। विचारा

0: पहले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 184 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993

0: अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
1: हीरोइनें भी हैं,
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
1: अब
0: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
1: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
0: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास बैठार करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर में डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
1: कनेक्शन
0: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब।
0: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार मैं हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
0: जी।
1: ये पिक्चर

0: इज वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, 1-2 दिन में मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूंगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन।
1: सागर साहब लिख रहे थे?
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए 1-2 गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप जी आ जाते बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा,
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहां पे बैठा करते थे, रमन राकेश बेदी अवतार गिल भरत कपूर हम सारे लोग वहां जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना,
0: उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला जिसलिए उन्होंने, बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में? तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे?
1: हाँ हाँ
0: लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया फिर गाने वाने। अब था उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, उन्हें क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उतना ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा कोई पिक्चर

0: आ रही है उनकी रिचा ऋषि कपूर की कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो होगा। बोले अब अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है?
0: कहानी नहीं,
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार
0: साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, तो कर लो मान गए। यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे,
0: कहानी ढूंढ रहे क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग। तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया। उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज राइटर। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया। जी
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं कभी पिक्चर बनाते, वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था।
1: जी
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: onun ne mi diskar ideası mı ya çok obsumaya
1: dünyada
0: idea sonra dinon ke baad 2-4 din aur phir ye shabana shooting kar rahi thi outdoor mein shayad kaun si punk apne screen kapoor ka director hamara foreign mein chala gaya jo dev saab ka bhanja tha na main
1: shekhar kapoor
0: sorry ha shekhar kapoor naamon mein aajkal mein
1: mujhe
0: gadbad hoti hai shekhar kapoor ki shooting kar rahi thi
1: ha
0: pehli film ki
1: ha
0: kahin Dehradun ya us taraf kahin not और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे और 34 सीन लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए बहुत अच्छे सीन थे बढ़िया लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ तो उन्होंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जब मैं कंप्लीट ही था तो मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ तुम यार अपने दोस्त हो तुम समझ सकते हो ना तुम एक शेड्यूल करो मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 साल टीम से शुरू करके पिक्चर मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है स्क्रीन पे तैयार है मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते सुनाते तो फिर रॉक बुक किया गया
1: अच्छा
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा
1: अरे बाप रे
0: उनका स्टाइल है जो सुनी इतनी देर सुन सकता हूँ इतने जो भी उन्होंने सुना इन्होंने पहले

0: दूसरा सुना दिए, आगे के टीम सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आए, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन लेने गई, वो फिल्म में रखी गई जो दलीप साहब की थी और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी,

0: कि ऐसे फिल्म करने का। तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
1: हाँ,
0: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुक्कर उनका मेकअप करता था
1: जी, बहुत बड़े मेकअप में,
0: बहुत बड़े मेकअप में, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी थे। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुक्कर का भी शेयर था 5%।
1: वाह,
0: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
1: जी जी जी, गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहने उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है। वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
1: ओहो,
0: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाले भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना, जब 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेके न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
1: प्रदीप को लेके,
0: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बता,
0: दिलीप साहब को बता दी।
1: ओहो, गजब,
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
1: हाँ,
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ।
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओ, क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी, वो वहां के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं वफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
1: अच्छा
0: यारा,
1: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
0: सागर यारा
1: किताब में आई,
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उनसे बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज पसंद नहीं आएगी मैं कहूंगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ। बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता हूँ।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: है, फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में, बता दी
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है।
0: जी
1: जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी। मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था।
0: जी।
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी।
0: जी।
1: तो उनके पास, मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है।
0: ओ ओ ओ
1: लेकिन मुझे जल्दी

0: पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ फिर आ जाओ। उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन था, आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
1: जी,
0: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक था ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटे पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोला थे, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके।
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहां आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय होगी। दोनों खुश थे और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चावला साहब, ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमलॉर्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉर्ड मालिक उनका वो आ गया और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉर्ड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहां बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहां पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहां रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया,
0: कभी
1: मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ, वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद
1: करते देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते है, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूंगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग चलो जाओ आते हैं चलते शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग होके जहाँ पे बोला जो जिस तरह लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की। क्या हुआ सब डेथ होनी थी और हार्ट

0: सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, फिर बाद में पता चला क्योंकि वाइस ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
1: जी जी जी,
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हुए हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युव वाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: मेरे प्यारे साथियों, सुहानी शाम में हवाओं का ये पैगाम लाई हूँ, आपकी मुस्कान के नाम सहज सलाम लाई हूँ। जी हाँ, आपकी मुस्कान के नाम सहज सलाम लाई हूँ। बारिश की बूंदों में छुपी है सुकून की एक कहानी, और चाय की हर चुस्की कहे बस सुनते रहो युववाणी, बस सुनते रहो युववाणी। तो चलिए इस हसी सफर की शुरुआत करते हैं, जहाँ दिल की धड़कनों को कुछ सुकून देते हैं। दोस्तों, अब आज हम बात करेंगे योग और तनाव प्रबंधन की, ताकि जिंदगी में फिर लौट आए रोशनी। फिर खोलेंगे आसमान में के कुछ अनकहे राज क्रायोस्फेनिक विज्ञान के दिलचस्प अंदाज, और फिर मिलवाएंगे आपको एक ऐसी संस्था से जो बदल रही है दुनिया अपने हौसले और जज्बे से। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जब दिल से निकले आवाज तो बन जाती है बात। आपकी अपनी रेडियो दोस्त शिवानी श्रीवास्तव सहज लेकर आई है आज लफ्जों में मिठास और एहसासों की बरसात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में थक सा गया है ये मन, थोड़ा ठहर थोड़ा संभल यही कहती है हर धड़कन, यही कहती है हर धड़कन। साथियों, सुबह की शुरुआत अलार्म से और रात का अंत मोबाइल की रोशनी में, इन सब के बीच कहीं खो जाता है हमारा सुकून। काम का दबाव, रिश्तों की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता और बीते कल का बोझ, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे अंदर तनाव का घर बना लेते हैं। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस भाग दौड़ के बीच आपने आखिरी बार खुद के साथ वक्त कब बिताया था? न दौलत में, न शोहरत में सुकून मिलता है खुद की मोहब्बत में, सुकून मिलता है खुद की मोहब्बत में, और यही खुद से मिलने का सबसे खूबसूरत रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं योग की। साथियों, योग सिर्फ शरीर को मोड़ने की क्रिया नहीं है, ये तो मन शरीर और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने की कला है। जब आप गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो जैसे हर चिंता हर बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, दिमाग हल्का और दिल भर सा जाता है, और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है, जहां शांति है, स्थिरता है और सिर्फ आप हैं। खामोशी भी कुछ कहती है अगर सुनने का हुनर हो, सांसों में भी सुकून है अगर जीने का सफर हो, अगर जीने का सफर हो। साथियों, तनाव कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो एक संकेत है कि हमें खुद की तरफ लौटना है। सुबह की ताजी हवा में 15 से 20 मिनट योग, दिन में कुछ पल अपनी सांसों के साथ, और रात को सोने से पहले थोड़ी सी शांति, ये छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव

ला सकती हैं। और हाँ, अगर कभी मन बहुत भारी लगे तो उसे दबाइए मत, किसी अपने से बात कीजिए या खुद के साथ कुछ पल चुपचाप बैठ जाइए। गम को दबाने से वो और बढ़ जाता है, उसे अपनाओ तो वो खुद सिमट जाता है, उसे अपनाओ तो वो खुद सिमट जाता है। साथियों, योग हमें यही सिखाता है, खुद को स्वीकार करना और खुद से प्यार करना। हमें योग करने के लिए किसी बड़ी जगह या महंगे साधनों की जरूरत नहीं, बस एक शांत कोना और एक सच्चा इरादा ही काफी है। एक आसान शुरुआत कीजिए, सुखासन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे महसूस कीजिए कैसे आपका मन शांत हो रहा है और कैसे तनाव खुद ब खुद दूर होता जा रहा है। जब मन में सुकून उतर आता है तो हर दर्द भी मुस्कुराता है, साथियों याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह की पहली किरण जरूर आती है, तो क्यों ना आज से हम अपने जीवन में योग को एक आदत बना लें और हर दिन को थोड़ा और सुकून भरा बना दें। इसी खूबसूरत सोच के साथ, खुद को वक्त देना भी इबादत से कम नहीं, जो खुद को समझ ले उसे कोई गम नहीं। जी हाँ, जो खुद को समझ ले उसे कोई गम नहीं। दोस्तों, योग अगर मस्ती के साथ गुनगुनाते हुए किया जाए तो मजा ही आ जाता है। तो चलिए सुनते हैं बरेली की बर्फी फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसे संगीत दिया है तनिष्क बागची ने, आवाज दिया है पावनी पांडे, देव नेगी, श्रद्धा पंडित और प्रवेश मलिक ने, और अपनी कलम के सुंदर शब्दों से सजाया है शाबिर अहमद ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इस पर रेडियो श्रोताओं से मंजली सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष इसी वर्ष 8 जून को पूरे होने वाले हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने अपने कुछ श्रोताओं से बातचीत की और उनसे पूछा आकाशवाणी से जुड़े उनके बेहतरीन अनुभव और उनकी यादों के बारे में।
2: मेरा नाम है पूजा मिश्रा। याद है वो दिन जब सुबह सुबह रेडियो पर भजनों से शुरुआत होती थी और दोपहर में स्कूल ब्रॉडकास्ट सुना करते थे। आकाशवाणी केवल समाचार का माध्यम नहीं बल्कि मनोरंजन का साथी था। जब भी ये आकाशवाणी की आवाज़ आती थी सब काम छोड़कर लोग बैठ जाते थे। आज भले ही तकनीकी बदल गई हो पर आकाशवाणी की वो गूंज आज भी जहन में तरोताज़ा है। यह सच में देश का पहला और अपना चैनल था। हम आकाशवाणी चैनल के जरिए समाचार, बुलेटिन, गीत और फरमाइश, नाटक, युवावाणी, कृषि दर्शन आदि सुनते थे और उससे हमारी बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हैं।
3: मेरा नाम है राहुल चौहान। आकाशवाणी से हमारी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे सुबह 6 बजे भूले बिसरे गीत सुनना, रातों को विविध भारती का प्रोग्राम सुनना, क्रिकेट की कमेंट्री और भाईचारे का एक एहसास जिसमें गांव-गांव में एक ही वक्त पर सब लोग बैठकर न्यूज़ सुनते हैं और खेती के प्रोग्राम देखते हैं और मौसम की जानकारी सुनते हैं।
4: मेरा नाम मंजू सिंह है। मेरी आकाशवाणी से जुड़ी सबसे बेहतर याद ये है कि जब कभी पहले टाइम में जब इन्वर्टर नहीं होता था हम लोग वर्ल्ड कप देखते थे तो लाइट चली जाती थी, हम लोग रेडियो खोल के बैठ जाते थे क्योंकि उसे लाइव स्कोर्स और फिर काफी चीजें ऐसी बताई जाती थी। और आज के टाइम में आकाशवाणी से न्यूज और जॉब वगैरह जो युवावाणी कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं कार्यक्रम वो सुनती हूँ, जो काफी ज्यादा हम लोगों के लिए यूजफुल होते हैं।
5: राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है। जब हम छोटे थे तब रेडियो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। उसी समय से मुझे आकाशवाणी सुनने की आदत लग गई, जहाँ से समाचार, गीत, संगीत और कई ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनने को मिलते थे। खासकर आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले अच्छे अच्छे गीत संगीत मुझे बहुत पसंद है। पुराने और मधुर गीत जब सुनाई देते हैं तब मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। इसके अलावा सुबह के समय प्रसारित होने वाले भागवती गीत और भक्ति संगीत मेरे लिए बहुत विशेष होते हैं। ये गीत मुझे सुबह सुबह एक नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच और उत्साह से भर देते हैं, जिससे मेरा पूरा दिन अच्छा और प्रोडक्टिव बना रहता है। मेरे लिए आकाशवाणी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि यह ज्ञान, संस्कृति और सकारात्मक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भी जब मुझे समय मिलता है तो मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम अवश्य सुनता हूँ और उससे मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। आकाशवाणी के माध्यम से मुझे न केवल देश दुनिया की जानकारी मिलती रही बल्कि समाज से जुड़े विभिन्न विषयों को समझने का भी अवसर मिला। इसके कार्यक्रम की भाषा, सादगी और प्रस्तुति करने का तरीका हमेशा मुझे आकर्षित करता रहा।
6: मेरा नाम विवेक मिश्रा है। आकाशवाणी भारतीय जन जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है, जो दशकों से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से लोगों से जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी हमारे जीवन में विभिन्न तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसे विश्व स्तरीय समाचार और सूचना का एक स्रोत के तरीके से, सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव के लिए कार्यक्रम आते थे विविध भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड जैसे चैनलों के माध्यम से शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और फिल्मी गानों से यह आपको जोड़ता है। आकाशवाणी में ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी होते थे किसानों के लिए, कृषि वाणी, फार्म एंड होम जैसे, युवाओं के लिए युवा वाणी और कैरियर से जुड़े कार्यक्रम, स्वास्थ्य और शिक्षा की जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम, और आकाशवाणी थिएटर ऑफ माइंड और यादों के लिए भी रेडियो नाटकों के माध्यम से आकाशवाणी थिएटर ऑफ माइंड का अनुभव कराता है। पुरानी पीढ़ी के लिए सुबह सुबह आकाशवाणी को सिग्नेचर ट्यून और भजन सुनने की यादें जीवन में गहरे तरीके से जुड़ी हुई है।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ श्रोता जिन्होंने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर अपने आकाशवाणी से जुड़े कुछ अनुभवों को और यादों को साझा किया।
0: हो दोस्तों, हो चला है वक्त एक छोटे से अंतराल का और मिलते हैं अंतराल के बाद।
7: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000

0: ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
2: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
2: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
1: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
2: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
3: दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, आपकी रेडियो दोस्त शिवानी श्रीवास्तव सहज के साथ। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं और लगवाते हैं आपको ज्ञान विज्ञान के सागर में डुबकी और करते हैं बात क्रायोस्फेरिक विज्ञान की। आज हम उतरेंगे धरती की उस दुनिया में जहां सब कुछ जमा हुआ है, शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। जी हां साथियों, आज की हमारी कहानी है क्रायोस्फेरिक विज्ञान की। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, चारों तरफ सफेद बर्फ, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली खामोशी। जी हाँ, यही है क्रायोस्फीयर, धरती का वो हिस्सा जहाँ पानी अपने ठोस रूप में मौजूद है, ग्लेशियर बर्फ की चादरें, जमी हुई झीलें और यहाँ तक कि जमी हुई जमीन, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और साथियों, इन सब का गहराई से अध्ययन करना ही कहलाता है क्रायोस्फेरिक विज्ञान। लेकिन ये दुनिया सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, ये धरती के संतुलन की सबसे बड़ी ताकत भी है। सूरज की किरणें जब बर्फ पर पड़ती हैं, तो ये बर्फ उन्हें वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, यानी धरती को ठंडा बनाए रखती है। लेकिन अगर यही बर्फ कम होने लगे तो सोचिए क्या होगा। दोस्तों, यही वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया के सामने आ खड़ा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 से 2024 के दशक को क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्यवाही का दशक घोषित किया है। दोस्तों, धरती का तापमान बढ़ रहा है और इसके साथ ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर अंटार्कटिका की गहराइयों तक बर्फ धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही है और इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तटीय शहर खतरे में है और मौसम का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। साथियों, हमारे अपने भारत में हिमालय के ग्लेशियर गंगा और यमुना जैसी नदियों का जन्म स्थान है। सोचिए, अगर ये ग्लेशियर तेजी से पिघलते रहे तो पहले बाढ़ आएगी और फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है जब पानी की कमी हमें परेशान करेंगी। ये बर्फ के पहाड़ सिर्फ ठंडक नहीं देते, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद है और इनमें छिपा है हजारों साल का इतिहास। और अगर ये पिघल गए तो सिर्फ बर्फ नहीं, हमारा भविष्य भी पिघल जाएगा। ये बर्फ यूं ही नहीं धरती को सुकून देती है, इसके सीने में कई राज छिपे होते हैं। संभाल लो इसे ऐ इंसान, संभाल लो इसे ऐ इंसान, वरना बह जाएंगी ये और रह जाएंगी बस यादें, बस यादें, बस यादें। तो साथियों, अगली बार जब आप बर्फ देखें तो उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी अहमियत भी समझिए। दोस्तों, बर्फीली बर्फीली वादियों और क्रायोस्फेरिक

विज्ञान की रोमांचक दुनिया से अब वक्त है आगे बढ़ने का, और अब रुख करते हैं एक ऐसी संस्था की ओर जो लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता के अधिकारों की मजबूत आवाजें मानी जाती है। जी हाँ साथियों, अब हम हमारे संस्था सेगमेंट में बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, जिसका गठन सूचना का अधिकार नियम अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के नागरिकों को सरकारी जानकारी तक आसान और पारदर्शी पहुंच दिलाना। साथियों, यह आयोग पूरे देश के सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों पर अधिकार रखता है। यदि आसान शब्दों में कहें तो यदि किसी व्यक्ति को किसी केंद्रीय सरकारी विभाग से मांगी हुई जानकारी समय पर नहीं मिलती या गलत जानकारी दी जाती है तो वह सूचना का आयोग में अपील कर सकता है। यह आयोग मुख्य रूप से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं। साथियों, सूचना का अधिकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत यदि किसी व्यक्ति को 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलती तो वह पहले विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है। इसके बाद भी समाधान न मिलने पर 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकती है। आयोग के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं। यह संबंधित विभाग को सूचना देने का आदेश देता है, रिकॉर्ड सही कर रखता है, स्वप्रेरणा से जानकारी सार्वजनिक करने को कह सकता है और जरूरत पड़ने पर अधिकारी पर जुर्माना भी लगा सकता है। आयोग शिकायतों की जांच करता है और हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। साथियों, धारा 20 के अनुसार यदि कोई अधिकारी जानबूझकर सूचना देने में देरी करता है, गलत जानकारी देता है या सूचना छिपाता है तो आयोग उस पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। साथ ही विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों को समय पर सही जानकारी मिल सके। साथियों, RTI कानून आम नागरिक को यह ताकत देता है कि वह सरकार से सवाल पूछ सके और सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सके। यही कारण है कि केंद्रीय सूचना आयोग लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में जवाबदेही बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। साथियों, केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माने जाते हैं। यही कारण है कि यह संस्था लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जागरूकता की इस महफिल से अब जरा रुख करते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं गोलमाल फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसे धुन दिया है RD वर्मन ने, आवाज दिया है किशोर कुमार ने और अपने कलम के सुंदर शब्दों से सजाया है गुलजार ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, इसी गीत संगीत के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पर जाते जाते बता दें, हमारा यह कार्यक्रम युवाणी आता है हर रोज शाम 5 बजे, जो कि होता है हर दिन खास। तो आइए जान लेते हैं क्या है कल के कार्यक्रम में खास। दोस्तों, कल होगी चर्चा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की। सेगमेंट करियर गाइडेंस में होगी बात डिजिटल क्रांति, कॉमर्स में करियर की नई उड़ान की, जिसमें वार्ताकार होंगे प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा शहाब शाह। इसके साथ ही होगा रोजगार समाचार। तो सुनना ना भूले कार्यक्रम युवाणी, और दीजिए अपनी रेडियो दोस्त शिवानी श्रीवास्तव सहज को इजाजत। नमस्कार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: जिंदगी के सफर

0: में आपका सच्चा हमसफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अमरनाथ यादव और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
8: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं अवध राज मौर्य और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161867873।

0: खैर,
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलनाडु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक

0: कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Center was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revant Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy, and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the center, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. Built at an estimated cost of around 1700 crore rupees, it is the country's first fully operational PM Mitra Park and is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibhen Patel administered the oath of office in secrecy at the ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. Former BJP state president Bhupendra Chaudhary and BJP leader Manoj Pandey were inducted as cabinet ministers. State ministers Ajit Pal Singh and Somendra Tomar were promoted and given independent charge. The founder of Tamilaga Vetri Karagam, TVK actor turned politician C. Joseph Vijay has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office in secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. 9 ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said the central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of people. He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Union Home Minister Amit Shah today reviewed

0: The country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resources deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimum loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives and scientific advancements in forecasting. Vice Admiral Sanjay Vatsyayan has been appointed as the next Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command headquartered in Mumbai. He will take charge of one of the Indian Navy's most strategically important commands responsible for safeguarding India's Western Maritime Front and key sea lanes in the Arabian Sea. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants have set a target of 204 runs for Chennai Super Kings at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai. In reply, Chennai Super Kings were 60 for 1 in 4.4 over when reports last came in. Earlier put into bat, Lucknow posted 203 runs for the loss of 8 wickets in their allotted 20 overs. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना अनुसार निर्मला देवी निवासी खरीदपुर मौजा जलीलपुर थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या से सूचित करती हैं कि इनकी बहन सुनीता विगत 21 अप्रैल 2026 को खरीदपुर से कहीं लापता हो गई। लापता सुनीता की उम्र 32 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। घटना के समय ये लाल रंग का प्लाजो और सूट पहने हुए थी। लापता सुनीता के बारे में यदि कोई जानकारी आपके पास हो तो कृपया अपने निकट की पुलिस चौकी, थाना कोतवाली या फिर कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

0: तस्य प्रिया नेता अस्ति। पुतिनः एतदपि उक्तवान् यत् स्थायी शांति प्रस्तावस्य अंतिम रूपस्य निर्णयानन्तरमेव सः यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना व्लोदिमीर जेलेंस्की इत्यनेन सह मिलिष्यति। शंघाई नगरे आयोजिते धनुष क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीन देशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य लखनऊ सुपर जॉयंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरोति। प्रप्रथमं क्रीडयता लखनऊ सुपर जॉयंट्स दलं अष्टक्रीडकानां हानिपुरस्सरं 3,200 धावनांकाः विनिर्मिताः। संप्रति उभयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। मुख्यवार्ता पुनरेकवारम्। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अरुण कुमार कोरी और साथियों को।
2: चली गोरिया की हो रही, अरे कहना वा पे हाला वा उठाए के, अरे कहना वा पे हाला।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: पंचो जय हिंद। पंचो आज हमें एक बात याद आएगी ना, जैसे मैंने कहा ना कि न चौर हारियम न राज हारियम, प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक है, आप याद करा कि न चौर हारियम न चा राज हारियम न व्रत भाज्यम न चा भारकारी, वे कृते वर्धत यो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कहा मतलब ना चोर चोराय सकत है, ना राजा एक छीन सकत है, ना भाई एक बंटवारा कह सकत है। अब भैया एक सबसे बड़ी बात जो नहीं है कि बोझ यानी भार स्वरूप ना लागत, व्यय कृत्य वर्धति ओम नित्यम यानी खर्च करे से का मतलब दूसरे का बांटे से ये हमेशा बढ़त है। यही लिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जो विद्या धन है ज्ञान रूपी धन है ये सब धन में श्रेष्ठ है। कहे का मतलब सबसे बड़ा अवक्षय धन अगर क्यों माना जाता ना तो भौतिक संपत्ति से बिल्कुल अलग है। शिक्षा सच में एक अनमोल रतन है, कहे से हीरा मोती तो खो सकत है चोरी हो सकत है, पर जो ज्ञान है ना अगर एक बार मिल जाता है तो केहू भी छीन ना ही सकत है। कई एक बात और बताई, जीवन के अंधेरे का दूर करत है। बिना शिक्षा के इंसान याद करा अंधेरे में जीत रहा है, वो कब पता ही ना रहा। यानी कहे का मतलब है शिक्षा हम सभी का सही गलत अच्छा बुरा के पहचान करावत है। सबसे बड़ी दौलत यह है पैसा गाड़ी बंगला आ जाए काल ही ना रहे, लेकिन शिक्षा से मिला हुआ जो ज्ञान है ना हुनर है वो पूरी जिंदगी काम आए। शिक्षा के द्वारा ही इंसान जनता है डॉक्टर इंजीनियर टीचर वैज्ञानिक ये सब बनत है। एक बात और आपका बताई ना, जो सबसे बड़ी चीज है शिक्षा आत्मनिर्भर बनावत है। काहे सोचा पढ़ा लिखा इंसान केहू पे बोझ नहीं बनत, वो खुद कमाई के अपन फैसला स्वयं लियत है। लड़का हुआ या लड़की शिक्षा सबका अपने पैर पे खड़ा कर दिए थे। समाज और देश का अपन आगे बढ़ाने में ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है शिक्षा। जो उन्हें देश का इंसान पढ़ा लिखा रहता है वह देश में तरक्की आपका दिखाए पड़त है। जैसे सोचत होगा रोज रोज नवा नवा आविष्कार अच्छे अस्पताल साफ सुथरी सड़कें ये सब शिक्षित लोगों के ही देनिया है। और एक बात और बता दी ना, पढ़ा लिखा आदमी का सम्मान तो अपना ही मिलत भैया, धन से लोग डराए सकते लेकिन ज्ञान से लोग जाना थे का करते सम्मान करते। एक शिक्षित इंसान के बाद सब ही बहुत ध्यान से सुनत है। मैंने कहा पढ़ा लिखा है भैया बहुत बढ़िया बात कही, तो आपका एक बात

0: चलत चलत एक निचोड़ के शिक्षा से जितना भी आप कह सके थे उतना आप आगे बढ़ सके थे। यही लिए बहन जो शुरू में बताए ना कागवा की सब धर्म विद्या धन सबसे अच्छा है। एक बात और हमें याद आई ना कि जैसे अपने सभी कही थी कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसे अपने माटियों के मार स्वास्थ्य माटी के बहुत जरूरी है। मन ही सोचा था कि काव करी तो आपका एक बात हम बता दी कि जो माटी है ना वही से निर्धारित होता है कि अपन अन्न कैसे रहे। अन्न अगर बढ़िया रहे तो मन ही कहा कि भाई कहावत रही जैसे खावा अन्न वैसे रहे मन, जैसे पीवा पानी वैसे निकले बानी। यानी कहा का मतलब है कि अपन माटी के स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहे। ऐसा ही खाली है भैया ना खेत सनई ढैचा हरी खाद एक बुआ सकत है आप। अब बुआई के बाद आपका पता है बाद में रोटा बेटा लाए मारा मिला खट से खेते में जीवांश के कमी ना रहे। तो यही लिए आपका हम बताई थी ना कि ऐसे ने तो भेंटवार्ता लेके आई मृदा स्वास्थ्य संवर्धन एवं खरीफ फसलों की तैयारी जेकर बारे में बताता है रंजीत त्रिपाठी भैया इनसे बतवाते हैं अपने मंजू मौर्य चला सुना जाए।
1: मंचो हम सभी अपनी पंचायती माँ मेरी मेरे के विशेषज्ञ का बुलावा करी थी मेरे मेरे के जानकारी देवे बदे ठीक आज जैसे अपनी पंचायती माँ वहाँ है श्री रंजीत त्रिपाठी आप सहायक विकास अधिकारी हैं आपके पंचायती में स्वागत है। जैसन कि आज हमारा विषय है कि मृदा स्वास्थ्य संवर्धन एवं खरीफ फसलों की तैयारी। तो सबसे पहले हम आपसे जानब त्रिपाठी जी कि माटी के स्वास्थ्य संवर्धन हुए का और एक खरीफ फसल के तैयारी में का महत्व है हमारे पंचन का बताओ चले।
2: जैसे कि बात होती है मृदा स्वास्थ्य की तो मृदा स्वास्थ्य में यह सुनिश्चित करना होता है कि मृदा में जीवाणुओं की क्रियाशीलता क्या है, कार्बनिक स्तर उसका कैसा है, भौतिक और रासायनिक स्तर क्या है, उसकी उर्वरता बनी रहे और फसल उत्पादन लगातार अच्छा मिलता रहे और उत्पादन लागत जो है वो कम आए। इसको सुनिश्चित करने के लिए मृदा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है और ख़ास तौर से ये समय भी ऐसा है कि खरीफ फसलों की तैयारी से पहले अपने किसान भाइयों के खेत खाली हैं तो मृदा स्वास्थ्य संवर्धन करने के लिए ये सबसे बेस्ट समय है कि अभी सबसे पहले तो मृदा स्वास्थ्य का एक परीक्षण ही करा लें।
1: अच्छा परीक्षण करावे बदे हमारे पंचन का करे का परे बताओ चले।
2: जी मृदा परीक्षण कराने के लिए किसानों को अपने खेत से मृदा का नमूना लेना होता है।
1: अच्छा जी।
2: तो खेत जब खाली है तो मिट्टी की जो 6 इंच की जो है गहराई और उसकी चौड़ाई
1: अच्छा।
2: के साथ लंबाई का एक गड्ढा बनाएंगे। उसके बाद उसकी सारी मिट्टी को निकालते हुए और उसमें से जो जब गड्ढा ये तैयार हो जाएगा तो उसकी जो चारों परतें हैं उससे मिट्टी खुरचेंगे। मिट्टी जाके जब उसमें गड्ढे में इकट्ठी हो जाएगी तो उसको निकाल लेंगे ऐसे, मतलब कि खेत के चारों दिशाओं से या बीच से 5 जगह से इस तरीके से मिट्टी लेंगे और सबको इकट्ठा कर लेंगे। सारी मिट्टी जब इकट्ठा हो जाएगी तो उसको 2 भाग में बांटेंगे और उस प्रक्रिया को तब तक अपनाएंगे जब तक कि मिट्टी का नमूना 0.5 किलो ना हो जाए।
1: अच्छा।
2: तो इस 0.5 किलो मिट्टी के नमूने को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो फैजाबाद में है या आप तहसील स्तर पर भी है वहां पे अपना ये मृदा परीक्षण करा सकते हैं किसान भाई। उसमें अपना आधार कार्ड और खतौनी का जो खसरा संख्या है ये सब विवरण अपना दे के मोबाइल नंबर के साथ ये मृदा परीक्षण के लिए अपना नमूना लैब में दे के प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा तो हमारे पंचायत अगर चाहे तो अपन इनके कागज पत्र में आधार लागे और खतौनी लागे तो हमारे पंचायत एका दे के जाके सीधे कहाँ बताए ना आप जैसे
2: तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है जनपद में मंडली प्रयोगशाला है।
1: अच्छा,
2: तो हाँ वहाँ पे जमा कर देंगे या अपने विकास खंड में जो कृषि कार्यालय कृषि कल्याण केंद्र राजकीय कृषि बीज भंडार है वहाँ से संपर्क कर लेंगे तो उसमें मदद कर देंगे और इनका जो है मिट्टी की जाँच हो जाएगी। तो उसमें जो है 2 तरीके की जाँच होती है एक तो जिसमें 6 पोषक तत्वों की जाँच होती है और दूसरी जाँच जो है 12 पोषक तत्वों की होती है। 6 पोषक तत्वों की कराएंगे तो उसपे 29 रुपए का शुल्क लगेगा और 12 पोषक तत्वों पर 102 रुपए का शुल्क लगेगा। जैसे कि 6 पोषक तत्वों में आपका ये ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, पीएच हो गया, ईसी हो गया, एनपीके हो गया और वहीं पे जो 12 पोषक तत्वों की जांच है उसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जांच शामिल है।
1: मैंने कौन कौन संतुलित उर्वरक अपने खेते में है, कौन कौन नहीं है,
2: हाँ।
1: कौन कौन कम है, कौन डाले का, कौन नहीं डाले का, यही मेरे से जांच की जाए।
2: कौन सा डालना है और पोषक तत्व की किसकी कमी है, किस मात्रा में देना है, वो सब उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उसका उल्लेख रहेगा।
1: अच्छा।
2: जिससे कि मतलब कि किसानों को जो उर्वरता में जो कमी

0: बेचेगी वही डालना है, अन्यथा उनको प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो उसमें लागत ज्यादा आती किसान भाइयों की
1: जी।
0: और साथ ही जैसे कि अब ये मृदा परीक्षण करा लिए तो अब जब मृदा स्वास्थ्य की बात हो रही है तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन सुनिश्चित करने के लिए
1: जी।
0: इस समय जो हरी खाद की बुआई का जो है समय चल रहा है, अगर किसान भाई ढांचा फसल जो है अपने खेत में उगाएं और तो लगभग 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन वायुमंडल से स्थिरीकरण करके वो खेत में जो है उपलब्ध रहेगा, उतना मात्रा आपको जो है नहीं देना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: लेकिन डॉक्टर भैया एक बात हम आपसे और जानब कि पंचन के मौके पर जो खेत खाली है ओमन ये सेती का भूमि के समतलीकरण जो हुआ था वो का करे के जरूरत है
0: जी,
1: और जरूरत है तो कैसे?
0: जैसे कि खरीफ की तैयारी चल रही, खरीफ की मुख्य फसल धान की फसल है जिसमें कि पानी की मात्रा ज्यादा लगती है और उसमें एक नई विधा है जिसमें धान की सीधी बुआई की जाती है, तो जिन किसान भाइयों को उसको अपनाना है उसमें क्या है प्रथा विधि ऐसी है कि हम धान को नमी देते हैं ना कि पानी के ज्यादा जल भराव ना हो, ऐसी स्थिति में लेजर लैंड लेबलर एक यंत्र है जिसके माध्यम से खेत का अपने समतलीकरण करा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उस धान की सीधी बिजाई किसान भाई जिसमें करना है उस लेजर लैंड लेबलर से खेत का समतलीकरण जरूर करा लें।
1: जो नहीं आप यंत्र बताए नहीं है का कोनो यस योजना है हमारे पंचन मध्य जो मिल सकत है और मिल सकत है का वो पे छूट है कैसे का है बताओ चले
0: जी। ये जो है यंत्र अनुदान पर कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है, लगभग सभी विकास खंडों में एक दो किसानों के पास तो है ही है, और जिन किसान भाइयों को अभी जिसके पास ट्रैक्टर है अपना स्वयं का वो इस यंत्र को ले सकते हैं। इसके लिए हमारा जो विभागीय पोर्टल से बुकिंग होती है, किसान भाई जो पंजीकृत है तो वहाँ पोर्टल पे जो पंजीकृत किसान भाई है टोकन निकाल के इसको जो है यंत्र को अपना बुकिंग कर सकते हैं। लॉटरी के द्वारा कन्फर्मेशन होता है जिससे कि जो है उनको यंत्र पे चयन होने पर उनको अनुदान की राशि उनको मिल जाएगी।
1: अच्छा, तो ये कर ले कि हमारे पंचे अपने भूमि का समतलीकरण आसानी से कर सकत है। तो एक रहता है का कोनो कागज पत्र लागे कैसे का ऑनलाइन आप बताएं
0: जी। इसके लिए जैसे कृषि विभाग की जो वेबसाइट है
1: उस पर जाए
0: upagriculture.com और जो उस पे आपको वेबसाइट पे जाके जब बुकिंग शुरू होगी तो वहां पे आपको बुकिंग करना पड़ेगा यंत्र का चयन करते हुए। तो सबके लिए अलग अलग टोकन मनी है, जैसे जिन यंत्रों पे ज्यादा अनुदान है जैसे 50,000 के ऊपर है तो उस पे 2,500, 1,00,000 का है तो 5,000, इस तरीके के टोकन मनी शुरुआत में जमा होती है। बाद में अगर आपका चयन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं चयन होगा तो ये टोकन मनी आपकी वापस हो जाएगी।
1: अच्छा, लेकिन हम आपसे एक बात और जाना भी कि अभी आप कहागा कि खरीफ फसलन का तैयारी होता है तो ऐसा नहीं मां हमारे पंचन का खरीफ की फसलन बदे विभाग का कुछ योजना है, अगर योजना है तो हमारे पंचन का कैसे मिले
0: जी? कृषि विभाग इस समय खरीफ की तैयारी के लिए तो जैसे बीज की बात करें तो बीज इस समय उसकी प्री बुकिंग चली रही है खरीफ की
1: जी।
0: प्री बुकिंग में जैसे मैं बात करूं तो उसमें सामान्य बीज जिसमें ढांचा है धान है, हाइब्रिड बीज में धान का बीज है और मक्का का बीज है, और जो मिनी किट जो निःशुल्क किसान भाइयों के लिए दे है जैसे उसमें जिसका हम लोग न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं श्रीअन्न कहते हैं, ज्वार बाजरा कोदो सावा रागी और खरीफ की जो दलहन है उड़द मूंग अरहर और ये तिल, ये सब जो है निःशुल्क किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। इसके लिए प्री बुकिंग चल रही है agriculture.up.gov.in पर जाकर वो अपनी बीज की बुकिंग कर सकते हैं जिसकी आखिरी तिथि 10 मई है। इसके बाद लॉटरी के बाद जो है उनका चयन होगा, अगर आवेदन से अधिक लक्ष्य से ज्यादा आवेदन हो जाएगा तो लॉटरी के माध्यम से किसान भाइयों का चयन किया जाएगा और उन्हें बुलाकर निःशुल्क दिया जाएगा, उनका अंगूठा लगेगा।
1: लेकिन हम आपसे एक बात और जानब कि हमारे पंचन का ये कैसे मिले, जैसे कुछ पंचन के लिए कम खेता है तो का वनहू का ये सुविधा मिल सकत है, और जैसे एकड़ के हिसाब से या बीघा के हिसाब से कैसे
0: जी जी
1: पंचन का बताओ।
0: हाँ, जैसे कि किसान भाइयों का जितनी भी उनके पास जमीन है उसका पोर्टल पे उनका फीड हुए विवरण
1: अच्छा।
0: किसके पास कितना जमीन है, ये जैसे जो भी बीज है ये सब जो है बीज दर जो है उसके हिसाब से रकबा के आधार पे दिया जाता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जिसे जैसे किसान भाइयों का जो रकबा फीड है उसी के अनुसार वो जो है बीज पा सकते हैं अपने रकबा के अनुसार, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक जो है बीज उनको अनुदानित दर पे दिया जा सकता है।
1: बिल्कुल, लेकिन त्रिपाठी भैया एक बात हम आपसे और जानब कि ऐसे थी हमारे गांव में हर जगह देखा का मिला था कि फार्मर रजिस्ट्री होता है
0: जी।
1: तो ऐसे में आप हमारे पंचन का कहा चाहिए कि फार्मर रजिस्ट्री करावे और ऐसे कैसे हमारे पंचे लाभ पावे बताओ चले
0: जी। फार्मर रजिस्ट्री जो है

किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा है, वो किसान भाइयों की एक डिजिटल पहचान है। अभी तक किसान भाइयों की कोई डिजिटल पहचान नहीं थी, ये 11 अंक की यूनिक आईडी है जो कि किसान भाई के नाम से जो उनका आधार है, और उनकी तहसील में जितनी भी जमीनें हैं उसमें उनके जमीन के जितने भी टुकड़े हैं उस सब जोड़े जा रहे हैं फार्मर रजिस्ट्री में, तो किसानों की ये भी पहचान हो जाएगी कि उनके पास कितना खेत है। और कोई भी सुविधा, जैसे कि अभी बात करें तो उर्वरक जिस पे कि गवर्नमेंट अनुदान देती है, बीज पे सरकारी बीज भंडार से दिया जाता है, उर्वरक सहकारिता से या मतलब निजी उर्वरक विक्रेताओं के यहाँ से, तो वहाँ पे किसान भाई अगर जाएंगे तो उनको जो है फार्मर आईडी अपनी दिखानी पड़ेगी, उसमें जो उनका मतलब रकबा है और जो फसल लगी हुई है उस फसल के अनुसार से उनको यूरिया और डीएपी दे है अनुदान, जैसे एक हेक्टेयर पर एक सीजन में।

0: यूरिया और डीएपी दे है अनुदान, जैसे एक हेक्टेयर पर एक सीजन में 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी दी जाएगी किसानों को, जो कि बहुत ही मतलब पर्याप्त है अगर रकबा के अनुसार, उससे ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। तो संतुलित पोषक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए और किसान भाइयों को अब जो है, जैसे कि अगर ज़्यादा मात्रा में यूरिया किसान भाई दे देते हैं तो उससे उनके जो है मिट्टी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, पोषक तत्वों की अनुपलब्धता हो जाती है। ऐसे में मतलब कि किसान भाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार इस तरीके से ये दिया जा रहा है।
1: बिल्कुल, आपका कहा कि मतलब अति ना हुए, अति बहुत खराब हुए तब वो नुकसान है, और कम होइजे तो हमारे सबका पूरा लाभ ना मिल पाए। तो जांच परख के उनके माटी के जांच कराए के हम सभी अपने खेते में वही मुताबिक अपने उर्वरक का प्रयोग करे का बाटे। लेकिन चला चला आप हमारे पंचन का अपनी बारी से माटी स्वास्थ्य संवर्धन और खरीद फसलों की तैयारी बदे का सुझाव दिया चाहिए, का कहा चाहिए जहिया उनका लाभ है लाभ मिले।
0: जी, किसान भाई अपने जो है खेत का परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं, और खेत खाली है और ईश्वर ने जो है प्रकृति के द्वारा बारिश भी हो गई है तो सिंचाई भी नहीं करना है, ऐसे में हरी खाद का उपयोग जरूर करें। और अगर उनके पास जो है देसी खाद और कंपोस्ट नहीं है तो हरी खाद का जरूर उपयोग करें, इससे उनके खेत का स्वास्थ्य संवर्धन होगा। और फसल चक्र अपनाएं, और जो भी फसल चक्र अपनाने से लगातार अगर जो भी जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, फसल जो है अच्छी होती है।
1: बिल्कुल, आप सहायक विकास अधिकारी हैं और हमसे जोन भी प्रश्न अपने पंचन मरे पूछे वर्जे छूट गवार हुए तो आप हमारे पंचन का थोड़क मत दो चार शब्द में बताओ।
0: जैसा कि बात करें अगर, तो इस समय जो बीज आप कृषि विभाग से आपको मिलेंगे उसमें जो उपलब्धता है अभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर, तो उसमें CO51 जो शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रजाति है, C8-4 रहेंगे, और मालवी सुगंधा जो सेंटेड वैरायटी है, HUR-917, और जो है EMTU-7029, और ये सब प्रजातियां अपने बीज भंडार पर उपलब्ध हैं। किसान भाई देखें, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको प्राप्त करें और जो है अच्छे से खेती करें, तैयारी करें।
1: बिल्कुल, आप रहे रंजीत त्रिपाठी, आप सहायक विकास अधिकारी रहे, आप आए हमारे पंचन का मृदा स्वास्थ्य संवर्धन एवं खरीफ फसलों की तैयारी विषय पर पुरहार जानकारी दिन एक बदे पंचायती की वारी से और आकाशवाणी परिवार की वारी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचो देखा, ये तो रहे रंजीत त्रिपाठी भैया, जिसे मंजू मौर्य बतवानी मृदा स्वास्थ्य संवर्धन एवं खरीफ फसलों की तैयारी के बारे में। ये एडीओ एग्रीकल्चर अपने सुहावल माँ है सवाल में। अब आपको बताइए, जो एक बात बहुत बढ़िया बताएं कि यह सही हरी खाद के भाई अपने सब चर्चों करते हैं, बहुत सुंदर समय है खेते में अगर हरी खाद बोई अब बाद में पलटवा दी तो सोच लिया माटी की उर्वरा शक्ति कितनी बढ़िया हो जाती है। दूसरा बात, मिनी किट अपने यहाँ मिलती है, कौन बीज हमें करे का है, ब्लॉक से जरूर मिला रही, कैसे जब ब्लॉक पर जावे ना तब हमें जानकारी हुई कि यह शायद काव मिलता है। और अपन जो असली चीज है वो फार्मर रजिस्ट्री है, फार्मर रजिस्ट्री से जैसे मैंने कहा ना तुम्हार औकात कितनी है सब बता दिए थे, एक क्लिक मरी है ना और पट्ट से पता लग जाए कितने रकबा के आप हकदार रहा, आपका कितनी खाद मिलक चाहिए, कितनी बिया मिलक चाहिए, सब के बारे में रहा था। लेकिन देखा के बात बत कही करी, इससे पहले विज्ञापन है

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com।

0: kashvani@gmail.com.
1: पंचो देखा समय बहुत बलवान होत है, मने कारण पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान। तो अपने सभी का एक बात विशेष ध्यान रखे का कि जो समय चलता है ना, ये ना सोचा कि गर्मी के जुताई हमें करे ना ना करे का है, हरी खाद हमें करे का है, यह ऐसा ही सब चीज के तैयारी के समय है। लेकिन देखा बात बात कही तो करबे करबे, और अपने गाँव में काव काव रहा याद करा, यह हसाई तो सब चीज का तोरे लगे बाय, और अगर बाय तो समझ लिया कि फिर तो गांव के वासी यहाँ कैसे, जैसे चंदमौली साहब उनके साथ ही ये गौ नईम गाँव तहाँ चला सुना जाए।

पंचो देखा ये तो रे चंद मोली सहाय उनके साथ ही आपका गौनाइम बता दें ना कि अपने गांव में कहा ये सहाय जो ना आए और अपन गांव यही लिए मने कहा ना कि भारत अपन गाँव में बसत है। एक बात हमें याद है कि मौसम ऐसा ही बदलत है तो बदलत मौसम में पंच भैया सोचत हुई कि मौसम का जानकारी हमें आज मिले चाहिए तो जोन आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम विज्ञान विभाग से हमें मौसम का जानकारी मिली है। वह अधिकतम तापमान 36 डिग्री जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा यो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा रहा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम रही 88% और न्यूनतम रही 44%। हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हवा का जो दिशा रही ये दक्षिणी पश्चिमी रही। आने वाले 24 घंटा के बारे में अनुमान है, आंशिक बादल छावा रही, वर्षा हो तो भाई कोनो संभावना ना है ना, औसत तापमान सामान्य के आसपास रहे के आसार है। पंच सोचे तो कि काल का हुई तो काल भाई कृषि जगत के जो कार्यक्रम है उसमें चर्चा रही सड़क सुरक्षा और खाते न खाते जो बातचीत हुई एक काव्य पाठ हुई अशोक टाटमरी भैया के खेती किसानी पर आधारित काव्य पाठ और ये सब रहे अशोक टाटमरी जी के आवाज में। और लेकिन ये सब काल हुई पंच भैया का चलत चलत एक बात बता दी कि ऐसा ही तो अपने खेती बाड़ी में तैयारी के बढ़िया समय आए बिया है गौने बाझा है सब भी न्योता हकारी खूब बढ़िया से करत है लेकिन यह खाते से अपन जियरो देखे का है कि काल अपन जो भविष्य है ना वो अपने माटी में है। अपन माटी बढ़िया बनी रहे गर्मी जुताई करी हरी खाद के बुआई करी अपन कौन बीज लगा का वो कह तैयारी करी और जब समय अपने पंच भैया का ही विशेष समय पे करिए ना तो उनका पता है कि टाइम मैनेजमेंट के कितना बढ़िया असर हुआ था। और वह वाली हाल यह काबर सा जब कृषि चुकानी समय चूक पुन का पछतानी जब समय के मारा हो जाबा ना समय एकदम हाथे से निकल जाए तो फिर तुहार बियो ज्यादा लागे है कि नहीं लागत ज्यादा आई जी फायदा कम हो जी। ये लिए अपने सबई का कौनो काम करे का है तो समय पे करे का है यह बात का विशेष ध्यान रखे का है। और जब समय से अपने सबई तैयारी करब हर चीज के तो ये जान लिया कि अपनी जिंदगी में कब असफल होबे ना करब। ये लिए पंच भैया कहते कि हमें प्लान बनावे का है और प्लान का यह ना कि सिर्फ बनोबे करी संजक बनाई सुबेरे तोड़ दी नियम बनाई नियम पे चली और नियम से जब कोनो काम करब तो निश्चित रहे। लेकिन अब देखा अपनो समय कहता है ना चला जाए घरे क्वारी तो यह वादक साथे फिर कहियो नीक बात बत कहीं के साथे यही कार्यक्रम में फिर मिलवे। तब तक किता है हमें यानी रामू का दी अनुमति। जय हिंद।

इंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। हमारे आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर शेर और गीत, 9:15 पर खेल खिलाड़ी और 9:30 पर सुनिए सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:15 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का समय होगा 8:30 पर। इसके अंतर्गत आज की बात में बाहर जाने से पहले धूप से सुरक्षा उपाय जरूरी, साथ ही डॉक्टर अखिलेश कुमार की वार्ता होगी वाणिज्य विषय के अध्ययन से रोजगार के खुलते अवसर। 9:00 आपके संदेश आपके गीत, 9:30 पर सजीव फोनिंग हेलो अयोध्या और 1:00 सुनिएगा फरमाइशी फेसबुक कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग 12:30 और गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे 2:00 से। दोपहर 2:30 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम अंगना। अंगना कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा खरीदारी भी समझदारी भी और सर्व शिक्षा अभियान, साथ ही लोक गीत घरेलू सुझाव के अलावा दीपा सिंह की वार्ता होगी हस्तशिल्प कला को समृद्ध करने में जनजातियों का योगदान। शाम 5:00 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, इसके अंतर्गत चर्चा होगी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर, साथ ही गीत रोजगार समाचार के अलावा करियर गाइडेंस में प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा साहब शाह की वार्ता होगी डिजिटल क्रांति कॉमर्स में करियर की नई उड़ान। शाम 5:30 पर सुनिएगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, विषय होगा ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी। शाम 6:10 पर शाम सुहानी 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा 6:45 पर, इसके अंतर्गत चर्चा होगी सड़क सुरक्षा पर, साथ ही लोकगीत बाजार भाव मौसम का हाल के अतिरिक्त श्री अशोक टाटंबरी से खेती किसानी पर आधारित काव्य पाठ सुनिएगा। रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थे हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही देर बाद आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जाएगी ना। सो गर्ल क्या हो रहा है?
1: फेल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
2: RBI कहता है अपना पिन OTP

बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।

0: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेन मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा, तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियुक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी,

0: पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
4: एक बार फिर आपका विशेष जयमाला कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, ये किस्सा उस वक्त का है जब फरवरी सन 1948 में लेफ्टिनेंट कुशल चंद उन दो अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने स्थानीय मिलिशिया बल बनाने और लद्दाख घाटी की रक्षा करने में मदद करने की खुद अपनी इच्छा से लेह जाने की बात रखी थी। इसकी उन्हें स्वीकृति भी मिल गई थी। 4 माह के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य बलों के एक प्लाटून और लगभग 20 स्थानीय मिलिशिया के साथ लेफ्टिनेंट कुशल चंद उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दुश्मनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था।

साथियों, युद्ध का मंजर बड़ा भयानक था। दोनों ओर से वादियों में गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। कोई किसी से कम नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट कुशल चंद अपनी तत्परता बहादुरी दिखाते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें सिंधु घाटी के साथ लेह की ओर बढ़ने से रोक दिया। उन दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फिर गया। उन्होंने दुश्मनों के साथ एक विशेष गुरिल्ला युद्ध से उनका मुकाबला किया। उनके साथ कई साथियों का समूह था जो उन्हें कवर दे रहा था और वे इस तरह रेंगते हुए पुल के पास पहुंच गए और पुल में आग लगा दी। उन्होंने खलत्सी पुल पर दुश्मनों को 24 घंटे के लिए रोके रखा। इस कारण से सप्ताह भर की देरी का दुश्मनों को सामना करना पड़ा। वे कुछ कर पाने में असमर्थ हो गए। लेह में संचार की सुविधाएं भी नहीं थी। वे अपने कमांडर से संपर्क करने में असुविधा भी महसूस कर रहे थे।

साथियों, जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उचित राशन की सुविधा से सैनिक वंचित हो गए थे और यहाँ तक मोर्टार के बिना और गोला बारूद की भारी मात्रा में कमी का सामना लेफ्टिनेंट कुशल चंद्र और उनकी फौजी टुकड़ी को करना पड़ रहा था। ऐसी विषम स्थिति में भी उनके हौसलों और जज्बों में कोई कमी नहीं आई थी। वे बड़ी बहादुरी से युद्ध के मोर्चे पर डटे हुए थे। यही तो है हमारी भारतीय सेना के जाबाजों की खासियत। जब वे कदम बढ़ा लेते हैं तो पीछे नहीं हटते, दुश्मनों को परास्त करके ही दम लेते हैं और उनकी रणनीति के आगे दुश्मनों की एक न चल सकी और इस तरह वे लद्दाख के रक्षक बन गए। इस तरह उन्होंने भारतीय सेना की उच्च परंपराओं को बनाए रखा और अन्य लोगों के लिए एक संदेश भी दिया कि यदि जिगर में मजबूत हौसला हो तो फतेह ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, वो एक न एक दिन पास आएगी और तब जीत का परचम नीले आकाश में लहरा उठेगा। बाद में वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति मिली और लेफ्टिनेंट कुशल चंद ने 3 साल के लिए नवी डोगरा इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली। सफलतापूर्वक कमान संभालने के बाद उन्हें कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद का विदेश में एक कार्यकाल तय था, क्योंकि जिस विमान में वे ड्यूटी पर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे वो लाओस के ऊपर से जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ऐसी स्थिति में वे नहीं बच पाए और इस संसार से सदा के लिए जुदा हो गए। ऐसे वीर जाबाज ऑफिसर की मिसाल हम सभी के हृदय में जिंदा रहनी चाहिए। साथियों, भारत सरकार द्वारा उन्हें सन 1950 में महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी ऐसी वीर बहादुरी को शत शत नमन, सलाम और प्रणाम। साथियों, लद्दाख घाटी की आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनकी और उनके जवानों की आभारी रहेंगी।

आज विशेष जयमाला की शौर्य गाथा की कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित लेफ्टिनेंट कुशल चंद के अदम्य साहस से भरी शौर्यता की कहानी। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। शोध आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, संयोजन और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साथ

0: एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती,

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांस और आवाज। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पारसनाथ की बांसुरी पर बजाई धुन और उसी फिल्म का गीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए पारसनाथ की बांसुरी पर बजाई शालीमार फिल्म की धुन।

अभी आप सुन रहे थे पारसनाथ की बांसुरी पर बजाई शालीमार फिल्म की धुन। अब लीजिए सुनिए यही गीत किशोर कुमार और साथियों के आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत है और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

बांसुरी पर बजाई फिल्म प्रेम गीत की ये धुन अभी आपने सुनी। कलाकार थे पारसनाथ। अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में प्रेम गीत फिल्म का यही गीत। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं जगजीत सिंह।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कल्पनाथ सिंह की लिखी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की।
1: पंडित जी पाँव लागी।
2: आयुष्मान यजमान आयुष्मान, भगवान भला करे, सब कुशल मंगल तो है प्यारे लाल जी।
1: आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है पंडित जी।
2: अच्छा अच्छा, ये संध्या समय कैसे आगमन हुआ, क्या कोई खास बात है?
1: बस एक निवेदन है पंडित जी। हाँ। असल में ससुराल जाने का इरादा है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई शुभ मुहूर्त इस यात्रा के लिए आप बता दें तो बड़ी कृपा हो।
2: क्यों नहीं, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ दिन, सब कुछ आपको बता देता हूँ। जरा पत्ता देख कर अभी विचारता हूँ। यजमान
1: जी,
2: इसके पहले आप कितनी बार ससुराल हो आए हैं?
1: पंडित जी, सच बात तो यह है कि अभी तक मैं एक बार भी ससुराल नहीं गया। ये मेरी ससुराल की पहली पहली यात्रा होगी।
2: क्या क्या क्या क्या कहा यजमान, क्या इसके पहले आप एक बार भी ससुराल नहीं गए?
1: जी नहीं।
2: इस युग में ससुराल की यात्रा में इतना विलम्ब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो लगता है आप जरूर कुछ भूल रहे हैं।
1: नहीं नहीं नहीं पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि ब्याह के बाद आज तक मैं ससुराल नहीं गया।
2: जरूर कोई कारण होगा, खैर कोई बात नहीं।
1: पंडित जी, बात यह है कि मुझे पहले बड़ी शर्म लगती थी और फिर मेरी पत्नी मालती ने भी मुझसे कई बार कहा, लेकिन पंडित जी क्या करें, कोई जुगाड़ ही नहीं लगा, अब गलती हो ही गई।
2: कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, तो आज कौन सा दिन है?
1: आज
2: रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी तीन दो पांच, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। भगवान भला करे, मंगलवार को प्रातः 4:21 से पूर्व ही आपकी यात्रा का योग बन रहा है।
1: अच्छा अच्छा,
2: इसके बाद कोई योग नहीं बनता यजमान।
1: ठीक है पंडित जी, हम वक्त से पहले ही निकल जाएंगे यात्रा के लिए।
2: आयुष्मान, भगवान भला करे।
1: अरे पंडित जी, मैं तो भूल ही गया था। ये लीजिए आपकी दक्षिणा, क्षमा कीजिएगा, जल्दी में था ना, इसलिए भूला जा रहा है।
2: जजवान, ससुराल को जा रहे हो, भूलोगे क्यों नहीं, ससुराल से लौट कर दे देते।
1: अरे नहीं पंडित जी, ये तो इस वक्त शुभ मुहूर्त निकालने के लिए मात्र पत्र पुष्प अर्पित किए हैं। ससुराल से लौटने पर तो मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ आपके दर्शन को आऊंगा और गांठ जोड़ के आपके चरण छूंगा। अच्छा मैं चल रहा हूँ।
2: भगवान आपकी यात्रा शुभ कुशल पूर्वक हो रहे।
1: मालती, पंडित जी ने तो भाई कमाल ही कर दिया, एकदम कमाल।
3: अरे क्या कमाल कर दिया पंडित जी ने?
1: तुम जितना आसान समझती हो, मुहूर्त उतनी आसानी से नहीं निकलता है। जैसे बगुला पानी में खड़ा खड़ा मछली को दबोच लेता है ना, ठीक उसी तरह हमारे पंडित जी भी पत्रा में आंख पहले तो गड़ाए रहे और फिर मुहूर्त मिलते ही उसे दबोच दिया। अरे आज मैं पंडित जी को मान गया।
3: अरे बस हो भी क्या, अरे बखाने किए जाओगे या ये भी बताओगे मुहूर्त कब का और किस दिन का निकला?
1: अब तैयारी करो तुम जल्दी से, ज्यादा देर नहीं है, केवल 3 दिन का मामला है।
4: अरे ओ बहुरिया, का प्यारे आए गवा?
1: हाँ अम्मा, मैं आ गया। अरे अम्मा, पंडित जी ने शुभ मुहूर्त जैसे निकाला ना, मैंने दक्षिणा उनके मुंह पर ठोंकी और सीधे घर आ गया।
3: अरे तो साफ साफ बतावत का ही नहीं है भैया कि पंडित जी ने किस समय की मुहूर्त की बात की है। अरे ये बच्चन की तरह पवारा काहे गाय रही है?
1: अरे अम्मा, मैंने मालती से पहले बता दिया कि अब ज्यादा समय नहीं, केवल 3 दिन बाकी हैं। पंडित जी बोले त्रयोदशी अर्थात मंगलवार को सवेरे 4:21 से पूर्व ही हमारी ससुराल।

0: यात्रा आरंभ हो जानी चाहिए। विलम्ब करने से फिर ससुराल यात्रा का जल्दी कोई जोग नहीं बनता।
1: तो इतनी सी बात बतावे के लिए इतना नाटक रचावे की कौन सी जरूरत रहे भैया। अरे बहू देख, कोई समय ज्यादा नहीं है, तू इसके भरोसे ना रहना, सारी तैयारी पूरी कर, समझ गई? अरे इसका क्या ठीक, ऐन बखत पे पता चलेगा कि कपड़ा लत्ता ही ठीक नहीं किया।
2: ए मालती, कान खोल कर सुन लो, मेरी पहली पहली ससुराल की यात्रा का मामला है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ए ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि कोई दामाद राजा आए हैं।
3: हाँ, क्या बेनोग आप कुछ समझे नहीं है क्या?
2: अरे जब समझे थे तब के प्यारे लाल और आज के प्यारे लाल में बड़ा फर्क हो गया है।
3: अच्छा?
2: अब श्री प्यारे लाल को समझने के लिए भेजे की जरूरत, समझी? अब कोई आसान नहीं मुझे समझना।
1: अरे बहू तुम भी बेकार ही इसके मुंह लगी हो, जाओ अपना काम करो।
3: माँ जी इनको समझा दीजिए, अगर इसी तरह वहाँ जाकर भी बड़बड़ाया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
2: अरे कहेंगे क्या है? प्यारे लाल की बातों को प्यारे लाल को अब समझना कोई आसान काम नहीं रह गया। तुम लोग क्या जानो प्यारे लाल और उनकी बातों को, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगराए।
3: अच्छा जी ठीक है, मैं तो भैंस हूँ ही ना, दो तीन दिन बाद आपको भी खुद अपनी स्थिति का पता चल ही जाएगा।
2: हाँ हाँ, तुमको भी बड़ा गुमान है ना अपने महके वालों पर।
3: ना हो?
2: मैं भी अब देखता हूँ उनको वहाँ जाके।
3: जाइए जाइए, जी भर कर देख लीजिए, अरे कहीं महंगी ना पड़ जाए आपकी पहली ससुराल यात्रा।

0: अरे चलो, अरे भैया ए सुनो, गोपालपुर गांव अभी कितनी दूर है?
1: गोपालपुर गांव
0: जी?
1: अरे भैया गोपालपुर नाम का गांव इधर तो कोई है नहीं।
0: भाई साहब यहीं कहीं गोपालपुर गांव है। अरे वहीं तो मेरी ससुराल है, असल में रास्ता भूल गया था इसलिए आपसे पूछा।
1: स्टेशन के कौन तरफ है यू गांव?
0: स्टेशन से इधर ही बिल्कुल पूरब की तरफ।
1: राम राम राम। अरे भैया तब तो आप बिल्कुल ही गलत आए गए। अरे आप तो स्टेशन से पश्चिम काफी दूर चले आए।
0: पश्चिम?
1: अब ऐसा करो पुनः स्टेशन लौट जाओ और स्टेशन से पूरब की तरफ 3-4 मील दूर कोई गोपालपुर नाम का गांव है।
0: अरे
1: वहीं किसी से पूछ लीजिएगा।
0: अरे सुनो सुनो सुनो, तो ये स्टेशन से पूरब नहीं है क्या?
1: भैया तब तो लगता है कि आपको दिशा भ्रम हो गया।
0: अरे राम राम, तब तो भाई बड़ी गलती हो गई।
1: अरे कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है।
0: भाई साहब सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, क्या आप स्टेशन मेरे साथ वापस लौट चल सकते हैं?
1: वाह भाई वाह, मैं क्यों लौटूं? क्या मुझे कोई दिशा भ्रम हुआ है? आप कैसी बातें करते हैं भाई साहब?
0: अरे भैया यही बात तो मेरी बीवी मालती भी कहती है, आप कैसी बातें करते हैं। सुनिए, क्या आप मेरी ससुराल के रहने वाले हैं?
1: अरे जाइए जाइए, अपना रास्ता लीजिए। आप क्या कहते हैं, आपकी बीवी क्या कहती है, मुझे क्या लेना देना है? न मैं आपकी ससुराल का हूँ और न मैं आपको जानता हूँ। अरे रास्ता भूल गए हो तो बतलाए दे रहा हूँ, वरना अपना रास्ता लीजिए आप। रात हो जाएगी तो अच्छी तरह ससुराल पहुँच जाइएगा।
0: हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज तो तुम बुरे फंस गए प्यारे लाल। चलो बेटा वापस स्टेशन। तो क्या वाकई मुझे दिशा भ्रम हो गया? मैं तो पंडित जी से मुहूर्त पूछ के चला था, ये ससुराल की यात्रा भी जीवन भर याद रहेगी। ना कोई सवारी ना कोई सुविधा, बस पैदल परेड। हे भगवान। मैं स्टेशन के पूरब तो आ गया, नहीं आगे नहीं जाऊंगा, यही किसी से पूछ लेता हूँ, कहीं बेकार में फिर से परेड करनी पड़ जाए। सुनिए भाई साहब सुनिए।
1: हाँ कहो।
0: मैं पूछ रहा था कि मैं स्टेशन से पूरब की तरफ जा रहा हूँ ना?
1: बिल्कुल ठीक, पूरब की तरफ जा रहे हो, जाना कहाँ है?
0: जी मुझको गोपालपुर जाना है। वो सामने वाला गाँव क्या गोपालपुर ही है?
1: बिल्कुल ठीक पहुँचे, वही गोपालपुर है। सकल से लागत तो पहले पहल आए।
0: जी हाँ जी हाँ, इस गांव में मेरी ससुराल है।
1: अच्छा अच्छा, गोपालपुर में तुम्हारी ससुराल है?
0: जी
1: है? हमरी सकल का देख रहे हो, शाम हो गई है, रास्ता तुमको मालूम नहीं, कहूँ रास्ता

0: भूल गए तो जल्दी जाओ।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे, इतना बड़ा सन्नाटा। बड़ा अंधेरा बढ़ता जा रहा है। कृष्णनगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अरे कुत्ते भूख रहे, कहीं काट न ले। दीनदयाल व्रत संभारी, हर नाथ संकट भारी।
2: ए नर, आगे बढ़े तो एक एक को देख लूंगा।
1: भूत साथ निकट नहीं आवे, महावीर नर जब नाम सुनावे।
2: अरे भाई कोई है? नर को
1: अरे भैया कहाँ चले जाए?
2: अरे जीजा जी, अरे जीजा जी आ।
3: अरे बड़ा गजब हो गो, अरे बड़ा अनर्थ हो गो। अरे जीजा जी का कुत्ता काट
1: दिया। अरे भैया आप तो हमका पहचान गए, इस ससुर कुत्ता नहीं पहचान पाए, इतने कुकुर पाले रहो। देखो काट ली, खून निकल रहा है।
4: अरे बेटा प्यारे लाल, तुमने इतनी देर लगा दी, आना ही था तो पहले खबर कर दिए होते।
1: अरे बाबूजी,
4: कोई बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आ जाता। प्यारे लाल ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। देखे भैया कहाँ काट लिया।
1: देखो बाबूजी पाओ माँ
4: चोरे तीरा
1: चोना चोना,
4: कुत्ता पालने का बड़ा शौक लगा था ना तुझे, अब हुआ ना अनर्थ, जवाई बाबू को ही काट लिया। अरे जा मर, क्या देख रहा है, पानी लाकर घाव धो और तुरंत जाकर वैद्य जी को बुला ला।
3: अरे अब वैद्य जी आगे क्या करेंगे बाबूजी? अरे इसके लिए तो बस एक ही दवा है, सुई। अरे सुई वो भी लगेगी अस्पताल में कल सुबेरे।
1: मर गए सुई। अरे बोली अम्मा, अरे ससुराल आए के ससुर कुकुरों का मतोड़ लीज। अरे मानती, तुम्हें अपने मायके का बड़ा गुमान था ना, तो मेरी भी मती मारी गई थी जो तीन दिन की छुट्टी रही थी, पंडित जी से साल पूछ के चले आए थे। दिशा भ्रम, उसके बाद पश्चिम की पद यात्रा, उसके बाद पूरब की पद यात्रा, उसके बाद इस कुकुर कांड। पर एक एक कई के पेट में बड़ी बड़ी 14 सुई। अरे अरे वारे मेरी ससुराल।

तो ये थी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की। इसे लिखा कल्पनाथ सिंह ने, निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। अभी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति सुन रहे थे।

0: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शेर और गीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात

0: डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम शेर और गीत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित द्विवेदी और प्रोग्राम का आज का पहला शेर है कैसर उल जाफरी का लिखा हुआ कि यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, कोई देखे तो ये समझे कि पिए बैठा हूं, आखिरी नाव ना आई तो कहां जाऊंगा, आखिरी नाव ना आई तो कहाँ जाऊंगा, शाम से पार उतरने के लिए बैठा हूँ, मुझको मालूम है सच जहर लगे है सबको, मुझको मालूम है सच जहर लगे है सबको, बोल सकता हूँ मगर होठ सिए बैठा हूँ, लोग अब भी मेरे दरवाजे पे कम आते हैं, मैं भी कुछ सोच के जंजीर दिए बैठा हूँ, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ, और कम से कम रेत से आँखें तो बचेंगी कैसर, कम से कम रेत से आंखें तो बचेगी कैसर, मैं हवाओं की तरफ पीठ किए बैठा हूँ।

तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ। जी हाँ, वसीम नादिर का लिखा हुआ शेर है कि उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ। ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, अफसोस अपना साथ वहां तक नहीं हुआ। और तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, हमसे तो अपना दर्द बयां तक नहीं हुआ। हैरत है वो भी शहर बसाने की जिद में है, हैरत है कि वो भी शहर बसाने की जिद में है, तामीर जिससे अपना मकान तक नहीं हुआ। और तस्वीर तेरी लफ्जों से बन सकती थी मगर, तस्वीर तेरी लफ्जों से बन सकती थी मगर, हमसे ही तेरा जिक्र यहाँ तक नहीं हुआ।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए

0: www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शेर और गीत आप सुन रहे हैं शोभित द्विवेदी के साथ आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए गोपाल दास नीरज का लिखा हुआ ये गीत कि जब भी इस शहर के कमरे से मैं बाहर निकला, जब भी इस शहर के कमरे से मैं बाहर निकला, मेरी स्वागत को हर एक जेब से खंजर निकला, मेरे होठों पे दुआ उसकी जमा पर गाली, मेरे होठों पे दुआ उसकी जमा पर गाली, जिसके अंदर जो छुपा था वही बाहर निकला, और जिंदगी भर मैं जिसे देखकर इतराता रहा, जिंदगी भर मैं जिसे देखकर इतराता रहा, मेरा सब रूप वो मिट्टी की धरोहर निकला, रूखी रोटी भी सदा बांट के जिसने खाई, रूखी रोटी भी सदा बांट कर जिसने खाई, वो भिखारी तो शहंशाहों से बढ़कर निकला, और क्या अजब है यही इंसान का दिल भी नीरज, क्या अजब है यही इंसान का दिल भी नीरज, मोम निकला ये कभी तो कभी पत्थर निकला।

मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। जी हाँ, अमीर कजरबाश का लिखा शेर है कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। और यकीन आए तो एक बात पूछ कर देखो, यकीन आए तो एक बात पूछ कर देखो, जो हंस रहा है वो जख्मों से चूर निकलेगा। और उस आस्तीन से अशकों को पोछने वाले, उस आस्तीन से अशकों को पोछने वाले, उस आस्तीन से खंजर जरूर निकलेगा।

0: हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिल्मी गीतों के कार्यक्रम शेर और गीत से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को।
1: तुझ पे वार जाएंगे।
0: और दोस्तों रात्रि 9:30 पर सुनना न भूलिए सजीव फणी कार्यक्रम हेलो अयोध्या। नंबर आपको याद ही होगा, फिर भी हम आपको रिमाइंडर करा दें, 73-76-40-90। समय याद रखिएगा रात 9:30 से।
1: चाहे दुनिया उठाए
2: ला।
3: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
4: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 10:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात 9 सुनिएगा न्यूज़ एट 9।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

0: आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन

0: आयुर्वेद के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की दो दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव।

0: आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त शोभित द्विवेदी। जी हाँ, कार्यक्रम में आइए, सबसे पहले सुनते हैं जिला बैडमिंटन सचिव श्री अनूप दुबे से प्रतिभा सिंह की ये बातचीत।
2: जहाँ पसीना मेहनत की कहानी लिखता है, जहाँ हौसला जीत की उड़ान भरता है, वहीं जन्म लेते हैं खिलाड़ी। आज हमारे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में बात होगी जुनून के जज्बे की, जीत की कहानियों की। आज हम बात करेंगे बैडमिंटन के बारे में, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही अनुभवी बैडमिंटन कोच श्री अनूप दुबे जी से, जो इस समय जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: सर, बैडमिंटन को ही आपने करियर के रूप में क्यों चुना, इसमें आपका रुझान कैसे बना?
3: देखा जाए तो मैं बचपन में कई गेम खेलता था, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे आए, नेशनल लेवल पे आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोचिंग लाइन में, क्योंकि हम लोग के समय में कोई ऐसे प्रशिक्षक हम लोग को नहीं मिल पाए थे,
2: जी,
3: जिससे कि हम लोग को बारीकियों के बारे में पता चले और हम उस ऊंचाई पे इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। तो हमने सोचा क्यों ना हम NIS डिप्लोमा करें, और कोचिंग में डिप्लोमा होता है ये जो पटियाला से होता है,
2: जी,
3: उस डिप्लोमा को किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पे इसकी का टेस्ट होता है, खेल देखा जाता है,
2: जी,
3: तो उसको करके जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने शहर के बच्चों को, अपने देश प्रदेश के बच्चों को अपना योगदान दे सके, उनको आगे बढ़ सके।
2: जी,
3: तो हमारे एक कोच थे सीनियर, वो क्रिकेट के कोच थे, उन्होंने मुझको राय दी कि आप इंडिविजुअल गेम में अगर जो NIS करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि कोई भी एक बच्चा अगर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकलेगा तो ये इंडिविजुअल खेले, इसमें जो असली खिलाड़ी होगा वही आगे आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि बैडमिंटन खेल में ही डिप्लोमा किया जाए,
2: जी, बहुत
3: और
2: अच्छा
3: इस तरह से हमने बैडमिंटन खेल को चुना और पटियाला से डिप्लोमा किया।
2: जी सर, एक अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए?
3: जो मेरी व्यक्तिगत राय है, एक अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि दिमागी तौर पे बहुत ही शार्प और बहुत ही तेज होना चाहिए,
2: जी,
3: क्योंकि बहुत ही कम समय मिलता है कि हमारे अपोनेंट जो हमको शटल कॉक फेंकी है उसको हमें कहाँ लौटाना है,
2: जी,
3: और उसका क्या रिटर्न बनना है जिससे हम फायदे में रहे। तो बहुत ही पहली चीज तो बुद्धिमान होना चाहिए, और दूसरी चीज जो रिएक्शन एबिलिटी है उसका, जो मतलब इसको कहते हैं दिमाग और शरीर का जो कोऑर्डिनेशन हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए।
2: सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगर बच्चे बैडमिंटन में आना चाहते हैं तो उनकी सही उम्र क्या होगी?
3: अब जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स फिर एक बार खेलों की तरफ जिनका झुकाव हो रहा है कि बच्चे स्वस्थ हो इस समाज में, उनको एक अच्छे रास्ते पे जाए, तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे अर्ली एज में शुरू करें, और जब ये कंपटीशन जो है हमारा 9 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है,
2: जी,
3: तो अगर जो उससे 3-4 साल पहले से, यानी कि आप मान के चलो कि 5-6 साल की उम्र से अगर जो कोई बच्चा बैडमिंटन को पकड़ रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी उम्र है जिसमें बारीकियां शुरुआती से ही अगर जो उसके अंदर ठीक आदतें डाली जाए खेलने की, तो वो आगे निकलता।
2: जी सर, सर एक प्रॉब्लम खेल के साथ और आती है, पेरेंट्स को भी आती है, कि खेल के साथ पढ़ाई में संतुलन कैसे बनाए, बिना पढ़ाई के तो कुछ होना नहीं है, तो ऐसा क्या करें?
3: ये तो देखिए, अगर जो कोई बच्चा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनना है,
2: जी,
3: तो आप जितने भी सभी खेलों में है, ये जरूरी नहीं कि बैडमिंटन ही है, ज्यादातर खेलों में है कि जो इंटरनेशनल लेवल के या वर्ल्ड लेवल के जो प्लेयर बनते हैं, तो उनको तो बहुत मेहनत करनी होती है, और फिर पढ़ाई से दूरी बनती है, क्योंकि इतनी मेहनत है, इतना समय उसमें देना पड़ता है कि पढ़ाई में बच्चों को वो समय नहीं दिया जाता। तो अब ये है कि जो बच्चा कम

0: टीटी बैडमिंटन खेल रहा है या कोई भी खेल खेल रहा है
1: जी,
0: तो उसका पूरा ध्यान जो है खेल पे ही होना चाहिए,
1: बाकी
0: पढ़ाई उसमें सेकेंडरी हो जाती।
1: जी जी सर। सर अक्सर क्या होता है, बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं या टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो उसमें कभी जीतते हैं और कभी हार जाते हैं, तो हार मिलने पर जो खिलाड़ी होते हैं उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जो कोच का काम होता है और पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चे को इतना मोटिवेट करे और उसका फोकस कितना है खेल के प्रति। अगर जो वो अपना 100% लगा के मैच खेल रहा है, टूर्नामेंट खेल रहा है, फिर उसमें कमियां ढूंढी जाती कि कमियां कहाँ से। मेन चीज आती है कि बच्चे का फोकस कितना, वो कितनी जल्दी अपने विरोधी खिलाड़ी को पकड़ के उसको फंसा के अपना खेल खिला के उसको, अगर जो वो उसमें महारत हासिल कर लेता है
1: जी जी,
0: तो वो बच्चा फिर हारता नहीं। इन केस अगर जो हारता है तो वो फिर उन कमियों को कैसे दूर करे, ये कोच और उस बच्चे की मानसिक स्थिति जो खेल के प्रति होती है उस पे निर्भर करता है।
1: जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि आम तौर पे जब बच्चे हार जाते हैं तो उनका मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है, उनको ऐसा लगता है कि अब हम जीत ही नहीं सकते हैं, तो इस तरह की मनोदशा उनकी होती है।
0: यही माता पिता और गुरु का काम होता है कि उसको उस अवसाद से निकाल के, उस मानसिक स्थिति से निकाल के और उसको खेल के प्रति, उसकी कमियों के प्रति जागरूक करना और उसके लिए उसको प्रैक्टिस देना।
1: जी सर। सर इस मतलब ये क्या सभी खेलों में फिटनेस का और डाइट का कितना महत्व है?
0: बहुत महत्व। एक फिट खिलाड़ी
1: जी
0: किसी भी गेम का हो
1: जी जी सर,
0: तो उसका जो शरीर और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन होता है
1: जी
0: वो बहुत ही अच्छा होता है। और जो जिस खिलाड़ी के अंदर फिटनेस कम होती है वो बच्चा मानसिक तौर पे भी फिर स्लो होता जाता है, और बाद में अगर जो किसी गेम में पूरा टाइम खेल हुआ, अच्छा मजबूत खेल हुआ, तो जो जो फिजिकली ज्यादा फिट होता है वही जीतता है। इसलिए फिटनेस का बहुत महत्व है। डाइट जो है उसी के हिसाब से कि किस गेम में है, जैसे बहुत से खेलों में हमारे जैसे बैडमिंटन में है तो बच्चे को एजिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो इसके लिए उसको उसी हिसाब से प्रोटीन, विटामिन और इन सब चीजों की जो है डाइट दी जाती है।
1: सर एक चीज और पूछना चाहेंगे कि फिटनेस और फोकस किसका रोल ज्यादा अहम लगता है आपको?
0: देखिए सबसे जरूरी चीज तो है फिटनेस
1: जी सर,
0: क्योंकि जब हम फिटनेस में कम रहेंगे तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे
1: जी सर,
0: तो फिटनेस जरूरी है। और साथ ही साथ जो मानसिक स्थिति होती है खिलाड़ियों की जिसको कहते हैं फोकस
1: जी जी,
0: वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन फिटनेस हमारी समस्या इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अनफिट खिलाड़ी कभी फोकस बना के नहीं
1: हो सकता। जी सर बिल्कुल सही कहा आपने,
0: तो
1: सर
0: इसलिए फोकस जरूरी है।
1: आपके प्रशिक्षण से निकले किसी खिलाड़ी की या किसी स्टूडेंट के बारे में, जो आपके बच्चे जो खेल कर निकले हैं आगे, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: हमने करीब 40 साल कोचिंग करी है।
1: जी जी सर, बड़ा लंबा समय है
0: जी। और बहुत इस छोटे से शहर अयोध्या से फैजाबाद जो था पहले,
1: जी जी
0: हमारे 5-6 बच्चे जो कि राष्ट्रीय स्तर पर खेले और आज जॉब में है
1: जी सर,
0: और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेल के आए हैं, तो उन सभी बच्चों के अंदर एक क्वालिटी थी कि जितनी मेहनत उनको दी जाती थी उतना करते थे और कोशिश करते थे कि अपनी कमियों को दूर करें। और जो उनको सबसे बड़ी चीज जो थी जो हमने देखी, अनुशासन
1: जी,
0: अगर जो अनुशासन है प्लेयर के अंदर, और जिसको अभी कहते हैं कि अनुशासन के साथ जो कमियां बताई जा रही है उसको दूर करने के लिए सीरियसली मेहनत कर रहा है वो बच्चे निकले। बहुत से बच्चे, अभी हमारा एक शिष्य जो कि इस समय बेंगलोर में खेल रहा है, वो राष्ट्रीय चैंपियन है अंडर 11 का, दिव्यांग सिंह, वो बचपन से बहुत छोटा था तब से खेलने आता था
1: जी सर।
0: और उसके अंदर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ अपने बड़ों के साथ खेल के, तो उसके अंदर डर नहीं था
1: जी सर,
0: और उस वजह से वो राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता

0: भी एकदम निडर होके खेलता था और वो राष्ट्रीय चैंपियन बना था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपकी बातें युवाओं को खेल के प्रति जागरूक और प्रेरित करेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जिला बैडमिंटन सचिव श्री अनूप दुबे से प्रतिभा सिंह की ये बातचीत। और अब आइए खेल खिलाड़ी में बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। बात सबसे पहले आईपीएल की। जी हाँ, आज पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 208 रन बना लिए। जोश इंग्लिश की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी पर उर्विल पटेल ने पानी फेर दिया। उन्होंने 13 गेंद पर ही अर्धशतक जड़ दिया। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंक हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जोश इंग्लिश ने 33 गेंद पर 85 रन बनाए। शहबाज अहमद ने 25 गेंद पर नाबाद 43 रन बनाए। अक्षत रघुवंशी 18, हिम्मत सिंह 17 और ऋषभ पंत 15 और मिचेल मार्श 10 रन बनाकर आउट हुए। एडन मार्करम 6 और निकोलस पूरन 1 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद शमी बगैर खाता खोले आउट हुए। आवेश खान बगैर खाता खोले नाबाद रहे। मुंबई इंडियंस के लिए जेमी ओटर ने 3 विकेट, अंशुल कंपोज ने 2 और नूर अहमद ने 1 विकेट लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला रायपुर के सहीर वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। जी हां, आज का दूसरा मुकाबला। मैच में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु ने रायपुर को अपने दूसरे होम ग्राउंड के रूप में चुना है। यहां पर 2 मुकाबले खेलेगी आईपीएल 2026 में। इससे पहले ये दोनों टीमें भिड़ चुकी हैं। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई को 18 रनों से हराया था। ऐसे में एमआई की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर अपना बदला पूरा करना चाहेगी। और ताजा अपडेट हम आपको दे दें, मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने 42 गेंद पर 57 रन बनाए 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। इसके अलावा नमन धीर 32 गेंद पर 47 रन जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। आज भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी की ओर से 23 रन देकर 4 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस 20 ओवर में अब से कुछ ही देर पहले 166 रन बना सकी 7 विकेट के नुकसान पर। और अब मुंबई को जीत के लिए चाहिए 20 ओवर में 167 रन। उधर तीरंदाजी में विश्व यूनिवर्सिटी खेलों के मौजूदा चैंपियन साहिल जादव ने शनिवार को यहां तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यह विश्व कप में उनका पहला पदक भी है। महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज जादव ने कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेमजो को 147-144 से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक हासिल किया। और अब बात करते हैं 6 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को शुक्रवार को इटालियन ओपन के दूसरे राउंड में क्रोशियाई युवा खिलाड़ी डीनो प्रियांजुन के हाथों हार का सामना करना पड़ा जिससे उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। 6ठी वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनोर भी बाहर हो गए जबकि पूर्व चैंपियन अलेक्जेंडर जुएल एलेना साइकाबीना और इना स्ट्रानवेट 3रे राउंड में पहुंच गए। दोस्तों, खेल खिलाड़ी का सफर आज बस यहीं तक। दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को। बस अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस

0: एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 90-44-20-70-70।
3: जी हाँ, रात्रि के 9:30 हो चुके हैं और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा शो सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूँ शोभित द्विवेदी, लाइव रहूंगा पूरे एक घंटे आपके साथ। और नंबर तो आप सभी जानते हैं, फिर भी आपको रिमाइंडर करा दें, 7376-8040-90। जी हाँ, उठाइए फोन और डायल कीजिए 7376-8040-90। सुनिए अपनी ही पसंद के नगमे और आपसे होंगी हमारी बातें भी। आइए देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो।
4: हेलो
3: जी, नाम बताइए।
4: तिवारी
3: जी, नवाबगंज से। नवाबगंज गोंडा।
4: हाँ, नवाबगंज गोंडा।
3: अच्छा, क्या हाल चाल है आपके?
4: हाल चाल बहुत अच्छा है भैया। और एक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। बहुत पुराने श्रोता है, जो चक्कर मिल चुका है आपसे आपका काल।
3: अच्छा जी, तो सुनते रहते।
4: रिटायर हो गया हूँ। पावर प्लांट में हम थे
3: जी।
4: हाँ, इस समय हम घर ही पे रह रहे हैं।
3: नवाबगंज में है इस समय?
4: हाँ, नवाबगंज में है, लेकिन बड़ी आशा रही कि फोन मिल जाएगा, बात हो जाएगी।
3: देखिए फोन भी
4: मिल जाएगा।
3: बिल्कुल, फोन भी मिल गया। और
4: या तो पत्थर के समान सुना दीजिए, वही जा रहमान का, रहमान का, और या कर्ण अर्जुन का सुना दीजिए।
3: अच्छा, तो ये बताइए
4: मौसम।
3: हाँ
4: हाँ,
3: बताइए बताइए, आप बोलिए
4: जी, क्या बताऊं।
3: हाँ, तो चलिए हम करण अर्जुन का सुनवा रहे हैं आपको गाना।
4: हाँ, वही वही सुनवा दीजिए, जवाब जवाबी जो है।
3: चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद तिवारी जी।

0: जी हाँ सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या शुरू हो चुका है और हमारे अगले कॉलर लाइन पर भी आ गए हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए।
1: सर मेरा नाम हेमंत यादव है। सर
0: यादव जी कहाँ से फोन लगाया?
1: सर माझी कला पोस्ट जिला अयोध्या से फोन।
0: तो क्या हाल चाल है यादव जी आपके?
1: सर जी एकदम मस्त अपन सुनावा।
0: एकदम मस्त है?
1: हाँ गुरु जी।
0: क्या हो रहा है इस समय बताओ।
1: सर जी पढ़ रहे तो आपका प्रोग्राम आएगा, बस तुरंत मोबाइल उठा के जरूर जुट गए।
0: जुट गए हो?
1: जुट गए हम तो सफलता प्राप्त कर ली।
0: बहुत सही। क्या पढ़ते रहे? अच्छा ही बतावा।
1: सर जी केमिस्ट्री पढ़ते रहे।
0: केमिस्ट्री
1: अब की बारही बाटन महिला ने केमिस्ट्री पढ़ते रहे।
0: अच्छा आपके बारही इंटर बाय आपकी आए?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: केमिस्ट्री पढ़ते रहे हो?
1: केमिस्ट्री पढ़ते
0: वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हो आए?
1: हाँ हाँ।
0: बहुत ही बहुत कठिन भैया केमिस्ट्री हमारे समझम कब्बो इवन आई की।
1: हाँ गुरु जी बहुत कठिन है सर जी, लेकिन
0: पढ़े वाले के लिए ना है लेकिन
1: हाँ हाँ
0: हमारे
1: हाँ।
0: जैसे लोगों के लिए है
1: ना नहीं। अरे सब मनियो तो पढ़ पढ़ के आज मतलब कोचिंग है।
0: ओका तो खाना वाना खाओ कि ना अभी बताओ।
1: हाँ गुरु जी
0: खाना वाना खाओ?
1: खाना
0: खाई तो
1: नींद आवे तो पढ़ ना फिर खाना खाई तो 12-1 बजे।
0: 12-1 बजे?
1: हाँ गुरु जी जैसे की आई पढ़ाई समझिए।
0: सच्चे बोलत हो
1: तो आप
0: नहीं है? नहीं अरे विश्वास है भैया काहे नहीं विश्वास है?
1: ना विश्वास है वीडियो कॉल
0: करो। वीडियो कॉल करो वाह गुरु। गनवा कौन सा सुनो अच्छा बताओ।
1: सर जी हम लोग आर्मी के फैन है मतलब की तो वही बॉर्डर वाला सुना दीजिए।
0: बॉर्डर
1: तो आपके लिए एक शायरी है।
0: हमारे लिए?
1: हाँ आपके लिए।
0: फरमाइए इरशाद।
1: कि मेरा दिल एक मंदिर आप उसकी मूरत हो। मेरा दिल एक मंदिर आप उसकी मूरत हो।
0: वाह
1: भगवान की कसम आप बहुत खूबसूरत हो।
0: कहाँ देखा तो हमें आई हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना खूबसूरत है कहाँ दिखाई पड़ी थे तुम्हें।
1: अरे हाँ हुआ देखे ने रिलिया माते दुखा पा।
0: यादव जी मौज ले रहे हो है?
1: अरे जैसे कि आवाज इतना प्यारी है तो हमने कहा कि
0: क्या बात
1: सकल सूरत कैसी होगी।
0: चलिए
1: तो इसलिए हमने तुरंत ही खोजा
0: फोन लगाए जुट गए फोनो मिल गए बतियो के लिए गनवा अब हम सुनवाई की ना सुनवाई।
1: अरे सुनाइए सब की आपसे बात करने में आनंद ही
0: आनंद आवन ना।
1: अरे काफी आनंद आवा लेकिन सर जी लागत ना ये के कोनो विषय उपाय हो तो बता।
0: नहीं अभी के एक नहीं एक तो मंत्र बाय लेकिन हमको एक बताई ना है वो।
1: अरे सर जी प्लीज।
0: अरे जाए दोलो बॉर्डर के गाना तो सुनो पढ़ाई करो अब इस सब में ध्यान ना दो ज्यादा पढ़ाई करो बॉर्डर के गाना सुनो। नमस्ते।

0: तो ये बॉर्डर का गाना आप सुन रहे थे हेमंत यादव की फरमाइश पर। और अब हमारे अगले कॉलर। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
1: जी राम तीरथ चौरसिया।
0: कहाँ से फोन लगाया है चौरसिया जी?
1: मंगलसी
0: सुहावल से।
1: जी सर।
0: तो क्या हाल चाल है आपके?
1: हाल चाल सब बढ़िया है, बैठे हैं घर पे, सुन रहे थे। अच्छा लगा हमसे प्रोग्राम, कई दिन से लगाते तो मिल नहीं रहा था। इसलिए उदासी आ जाती थी, फिर हमने कहा लाओ लगाए थे, क्या पता लग ही जाए भाई।
0: लग गया आज।
1: हाँ लग गया, बड़ा सौभाग्य है।
0: तो क्या करते हैं राम सूरज जी?
1: मेरी रामायण रामायण पढ़ते हैं, सत्संग भजन कीर्तन अपना चले जाते हैं।
0: वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए।
1: तो वही हमको गाना सुनना था, जिनका घर हो जैसा उनकी होश बढ़ा दी।
0: कौन से फिल्म का है ये, पता है?
1: याद नहीं है जी सर, बहुत पुराना गाना है, सुने से कहीं दिन तो हमसे याद आ जाए, दिमाग में बैठा था तब।
0: गाने के बोल तो आपने बताए हैं, फिल्म का नाम नहीं बताया।
1: अब याद ही नहीं है, बहुत पुराने गाने हैं ऐसा जगह है।
0: तो बताइए हम कैसे सुनवाएं आपको?
1: अरे आप तो निकाल भी देंगे।
0: क्या कह रहे हैं?
1: जिनका घर हो जिद्रा जैसा उनकी होत बढ़ाई, आगे आगे राम
0: फिल्म का नाम नहीं मालूम। बड़े घर की बेटी। चलिए गाना सुनवाते हैं आपको।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: चलिए गाना सुनिए और कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जी हाँ, लाइव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। उठाइए फोन और डायल कीजिए 7376 80 40 90, क्या पता अगली कॉल आपकी हो और आप सुनाएं अपने ही पसंद का गाना। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए।
1: हाँ जी सर नमस्कार, मैं अनिल यादव बोला ग्राम डोडेन खेरा तहसील बल्लू और जिला तिजौन मध्य प्रदेश।
0: क्या हाल चाल है यादव जी?
1: ठीक है सर।
0: ठीक है,
1: बढ़िया है सर।
0: बढ़िया है। और अच्छा मौसम कैसा है उधर का?
1: मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, अभी तो बादल छाए हुए हैं।
0: बारिश भी हुई है क्या?
1: हाँ जी जी, कल पाए से भाई थी बारिश।
0: हाँ
1: ठीक है।
0: तो क्या हो रहा है इस समय?
1: इस समय मैं दुकानदारी भी करती हूँ, पशुपालन है, दूध भी है, डेयरी का काम करता हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया। तो दुकान तो इस समय बंद हो गई होगी?
1: जी जी।
0: तो गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: क्रांति फिल्म का सुना दीजिए।
0: क्रांति फिल्म का?
1: हाँ जिंदगी जी।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: चलिए ठीक है, गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। कॉल करने के लिए धन्यवाद
1: जी सर। जी सर एक बात

0: आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: जी,
0: नाम बताइए, थोड़ा तेज बोलिए।
1: शिवकार मिश्रा नाम
0: है। क्या नाम है?
1: शिवकार मिश्रा।
0: शिवकार मिश्रा
1: जी।
0: कहाँ से फोन लगाया है?
1: बालापुर।
0: कहाँ पर है ये?
1: नंदनी के बगल से, जी गोंडा।
0: अच्छा गोंडा, नंदनी नगर गोंडा के पास से।
1: हाँ
0: सर। नाम तो बड़ा अच्छा है आपका, स्वीकार। क्या करते हैं आप?
1: घर पे रहते हैं।
0: घर पे रह के क्या करते हैं?
1: कुछ नहीं करते।
0: कुछ नहीं करते?
1: नहीं।
0: क्या उम्र है आपकी?
1: 20-22 साल उम्र है।
0: पढ़ाई नहीं करते?
1: नहीं सर, पढ़ाई नहीं करते। हाँ थोड़ा कम दिखता है।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो स्वीकार आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: मोहरा फिल्म।
0: मोहरा फिल्म का कौन सा गाना सुनेंगे?
1: कोई भी गाना
0: सुना दें। चलिए ठीक है स्वीकार जी, नमस्कार। गाना सुनिए मोहरा फिल्म का।

0: ni pa pa ma da ma ma ga pa ga ga re ma re re sa ga sa da ni sa re ga ma pa da ni sa ni da pa sa ni da.
1: भाई देखते हैं हमारे अगले दोस्त कौन हमारे साथ आ गए हैं। हेलो
2: हेलो,
1: नाम बताइए सर।
2: जगप्रसाद तुलसीपुर माझा नवाबगंज गोंडा।
1: जगप्रसाद
2: जी,
1: क्या हाल चाल है भाई साहब?
2: हाल चाल तो बढ़िया सर।
1: बढ़िया है
2: जी।
1: और तुलसीपुर माझा क्या हाल चाल है?
2: सब बढ़िया है सर। गन्ने की बुआई चल रही है सर।
1: गन्ने की बुआई चल रही है। कौन बोल रहा है आपके पीछे?
2: जी जी, लड़के बच्चे।
1: लड़के के धारे हैं सब? काव कहा था?
2: हाँ, काव कहीं है, खेलत
1: खेलत है। खाना पीना हो गए?
2: हाँ

0: शादी का माहौल है।
1: शादी भाई कहाँ घर है?
0: हाँ बगल में शादी है।
1: अच्छा बगल में शादी, न्योता हो गए?
0: हाँ न्योता खा के आएगी।
1: पूरी हो गए? पूरी अंदर हो गए? पूरी पनीर?
0: हाँ हाँ।
1: तो ललचवाए दियो जग प्रसाद भाई, अब का तू बहुत पनिया हो दम हम, तो पूरी काट दियो। यहाँ बैठे रह गए, यहाँ जनवा सुना।
0: हाँ, सर आपका भी निमंत्रण होगा कहीं ना कहीं।
1: हाँ लेकिन अब काव करी हम, ये ना बतावे के रहा ना कि हमारा न्योता है, हम पूरी काट के आई बाए। हमार मने ना लागे हिया, सारा मन पूरी में चला गए। अच्छा बताओ गाना कौन सा?
0: सरस्वती चंद्र का।
1: सरस्वती चंद्र का फूल तुम्हें भेजा है आए, तो सुनवाई गाना। तो अब गाना सुनवा रहे हैं, ठीक है?
0: ठीक है।
1: नमस्ते।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं शोभित द्विवेदी के साथ आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और हाँ दोस्तों, कंट्रोल रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्वप्निल। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं लाइन पर। हेलो
5: हेलो
4: जी, नाम बताइए।
5: नमस्कार।
4: नमस्कार, नाम बताइए सर।
5: ग्राम पुष्पलिया जय सिंहपुर सुल्तानपुर रमेश बात कर रहे हैं सर।
4: रमेश जी, रमेश भाई क्या हाल चाल है?
5: बढ़िया है सर।
4: बढ़िया है,
5: आप अपना बताइए।
4: हमारा भी बढ़िया है।

0: तो प्रोग्राम सुनते हैं हमारे यहाँ आप, रेडियो सुनते हैं?
1: जी जी रेडियो सुनते हैं, छोटे फोन पे।
0: क्या चीज?
1: छोटे फोन पे सुनते हैं।
0: छोटे फोन पे सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: जान तेरे नाम का कॉलेज बंद हो जाएगा।
0: क्या करते हैं रमेश भाई?
1: मैं तो सटरिंग का काम कर।

0: सटरिंग का काम करते
1: हैं। सटरिंग का काम करते हैं, कहाँ? सुल्तानपुर में ही?
0: जी जी, सुल्तानपुर में।
1: तो कॉलेज का है बंद करा रहे हैं आप?
0: अच्छा है, इसलिए सुन रहे हैं। और कॉलेज हम थोड़ी ना बंद करा
1: दें। नहीं, हम तो वैसे ही पूछ लिया। गाना सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद का रमेश भाई, और कुछ कहना चाहते हैं?
0: सर वो कुछ नहीं कहना, जैसे कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक को जो काटा बनाते हैं, धर्म काटा, तो कोई भी व्यक्ति अगर मेरी आवाज सुन रहा है,
1: प्रचार ना करिएगा।
0: जैसे कि ब्लूटूथ, यानी कि जो पैसा भेजने पर फोन पे पर जैसे बताता है,
1: प्रचार न कर, हाँ बताइए, प्रचार ना करिएगा अपनी दुकान का।
0: ऐसा काटा बनाए कि ताकि जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी वो काम आएगा, जो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं
1: उनके लिए भी काम आएगा।
0: हाँ, उनके लिए भी काम आएगा।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनिए, कॉलेज बंद हो जाएगा।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं भाई, हमें बड़ी खुशी हो रही है, आप हमारे मतलब जिंदगी में पहली बार आपकी कॉल लगी।
1: सर सर ये गाना सुना दीजिए, मुझे खुशी मिली इतनी दर्पण में न समाए।
0: पिक्चर का नाम बताओ जुग्गी लाल, तो हमें बहुत सारे
1: नाम तो नहीं याद है।
0: फिर फंसाए हो आप, बताओ।
1: सुना दीजिए सर।
0: अरे कहाँ से सुना दी, जब हमें पिक्चर का नाम नहीं पता है।
1: तो पुरानी फिल्म है सर, याद नहीं है ना। गाना पसंद है।
0: लेकिन जुग्गी लाल आपने जिंदगी में पहली बार फोन मिलाया है।
1: हाँ सर,
0: और हम
1: सियासी से सुन रहा हूँ रेडियो।
0: हाँ, और हम आपको ये वादा करते हैं आपको हम यही गाना सुनवाएंगे।
1: जी सर सुना दीजिए।
0: ठीक है,
1: धन्यवाद आपका।
0: और कुछ कहना चाहते हैं
1: सर? बहुत बस यही कहूँगा कि सर सबकी काल लगे, सबकी फरमाइशें।
0: हाँ, बहुत बढ़िया कह रहे
1: हो, मिलती है, सही है। हाँ,
0: नहीं ये आपने बहुत बढ़िया कहा कि हम यही चाहते हैं कि सबकी काल लगे।
1: हाँ
0: है कि नहीं जुग्गी लाल? आज जुग्गी लाल खुद बहुत है। खाना वाना भाई कि ना है?
1: अरे खाना वाना तो साहब हो ही गया, खाए के लेता रहे नहीं है आपके प्रोग्राम सुनत रहे साहब।
0: तो ठीक है, गाना सुना दी भाई जुग्गी लाल।
1: सुना दी जा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: रखी फोन, गाना सुनाइए अब।
1: हाँ सर सुना वाले।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते साहब।

0: दोस्तों, हेलो अयोध्या का लगभग आधा सफर पूरा हो चुका है और उठाइए फोन और डायल कीजिए 73-76-80-90। हेलो।
1: हाँ सर
0: जी। सर नाम बताइए।
1: जुग्गी लाल बोल रहा हूँ सर, श्रृंगी नारी धाम से।
0: श्रृंगी नारी धाम?
1: हाँ, माँ शांता देवी का मंदिर है सर।
0: जी जी, पता है हमको।
1: हाँ सर, तो वहीं से बोल रहा हूँ।
0: हाँ, क्या हालचाल है जुग्गी लाल?
1: सर बहुत बढ़िया है, अब और बढ़िया हो गया, आपसे बात हो गई बस सर। पहली बार कॉल लगा मेरा सर।
0: पहली बार लगा है मतलब इससे पहले?
1: पहली बार जिंदगी में।
0: जिंदगी में पहली बार कॉल लगा
1: सर आपके? हाँ।
0: ई कैसे जुग्गी लाल, नहीं कभी मिलाए, नहीं प्रयास नहीं किया या?
1: नहीं नहीं, बहुत प्रयास किए सर। पता नहीं क्यों, माँ शांता देवी का कृपा था, ये समझ रहा हूँ कि लग गया।
0: हाँ अच्छा। हाँ।

0: तो ये गाना तो आप सबने सुना जुग्गी लाल जी की पसंद पर, जिनको पहली बार कॉल मिलने पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। और अब आइए देखते हैं अगले साथी कौन है। हेलो
1: जी सर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: कंचन यादव बोल रहे हैं, ब्राह्मणपुरा अयोध्या से।
0: कंचन जी, क्या हाल चाल है?
1: सब बढ़िया है सर, आप कैसे हैं?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ
1: जी।
0: तो कंचन क्या करती हैं?
1: सर हाउस वाइफ हैं, घर पे रहते हैं, घर का काम, आपके प्रोग्राम सुनते
0: हैं। तो आज घर का काम हो गया सब?
1: जी सर,
0: घर का काम सब हो गया, आज निपट गया
1: जी सर। अभी बर्तन धुलना है।
0: बर्तन धुलना है अभी
1: जी सर, आपके प्रोग्राम
0: सुन
1: रहे थे, फोन लगा रहे थे,
0: रात होती बात हो जाएगी
1: तभी बर्तन धुलेंगे।
0: हमारे चक्कर में बर्तन धुलना लेट हो गया।
1: जी सर, लगा रहे थे बहुत देर से बैठ के।
0: हाँ अच्छा, इसीलिए बर्तन धुलना लेट हो गया
1: जी सर। कोई बात नहीं, हम धुलेंगे अभी।
0: नहीं बताइए तो आज आधा बर्तन हम भी धुलवा दें।
1: नहीं नहीं,
0: गर्म धुलेंगे। अच्छा, हम सोच रहे थे आप ऐसा ना कहें कि
1: हाँ, वही काम आपका है।
0: हाँ, बर्तन धुलने वाला काम आप

0: हैं। हम सोच रहे थे कहीं आप ऐसा ना कहें कि अच्छा सर आ जाइए, आधा आप धुलवाइए आधा हम धुलवाएं।
1: नहीं सर नहीं, गाना सुनेंगे बर्तन
0: धुल देंगे। गाना सुने तो गाना सुनते सुनते बर्तन धुल लीजिए। गनवा बताइए कौन सा
1: सुन। जी सर, तेरे नाम का सर, क्यों किसी को,
0: तेरे नाम का क्यों किसी को। ठीक है कंचन, और कुछ कहना चाहती हैं?
1: जी सर बस आपके प्रोग्राम सुनते हैं सर रेगुलर करते
0: हैं। तो घर पे कौन कौन है और सब?
1: अच्छा पहले जो है पहले आ रहा था सर, जो है सर आपके गीत हमारे वो बंद हो गया क्या?
0: कौन सा प्रोग्राम?
1: पहले सर आता था हर संडे को सुनाया जाता था, फिर आपकी गीत हमारे।
0: नहीं आता तो है, आज भी तो गया वो प्रोग्राम, अब 8:15 पे जाता है। आज आपने मिस कर दिया।
1: हाँ सर
0: वो 8:15 से जाता है 8:45 तक। ठीक है कंचन, गाना सुनवा रहे हैं आपको तेरे नाम फिल्म का।
1: जी,
0: ओके कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: दोस्तों, हेलो अयोध्या का सफर धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो आप भी बन सकते हैं हमारे अगले कॉलर। नंबर हमारा वही है, रिमाइंडर आपको फिर से एक बार हम करा दें, 7376-4090। उठाइए फोन और डायल कीजिए ये नंबर और जुड़िए हमसे। हेलो।
1: हाँ सर
0: जी। सर नाम बताइए।
1: सचिन रावत।
0: सचिन
1: जी सर,
0: कहाँ से फोन मिला है सचिन?
1: सर जनौरा अयोध्या।
0: जनौरा
1: जी सर। जी
0: क्या करते हैं सचिन?
1: क्या सर?
0: क्या करते हैं आप?
1: सर पढ़ाई करते हैं अभी।
0: पढ़ाई करते हैं
1: जी सर।
0: तो और कोई शौक वगैरह है पढ़ाई के अलावा क्या?
1: सर अभी तो अब पढ़ाई ही कर रहे हैं, अभी कोई शौक तो नहीं है।
0: कौन सी क्लास में हैं?
1: सचिन कभी आपका प्रोग्राम सुनते हैं?
0: हमारा प्रोग्राम सुनते हैं
1: जी सर, कभी कभी किसी किसी दिन।
0: कौन सी क्लास में हैं आप?
1: सर अभी तो हमारा क्लास इंटर हो गया सर, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं।
0: कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जनौरा में कहाँ पर रहते हैं सचिन?
1: सर जनौरा में नंदापुर डांडवा है, बगल में ही रहते हैं।
0: पक्का तालाब तक हम जानी थे।
1: हाँ बस सर वहीं, बस वहीं
0: जहाँ पक्का तालाब है, मंदिर रहा है, फिर से बन रहा है शायद।
1: जी सर जी, बस वही बगल बगल
0: ही। बगल में ही। तो सचिन गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर गदर फिल्म का सुना दीजिए, मैं निकला गड्डी लेके।
0: ठीक है सचिन, गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। कॉल करने के लिए धन्यवाद
1: जी सर।

0: हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़ गए हैं। हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
1: दिलीप गिरी स्वामी नारायण, छतिया, जिला गोंडा से।
0: क्या करते हैं दिलीप भाई?
1: सर जी बिजनेस करते हैं।
0: बिजनेस करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं?
1: अचार का सर जी।
0: अचार का बिजनेस करते हैं
1: क्या सर?
0: अचार का बिजनेस करते हैं
1: जी सर। जी सर,
0: सबके दांत खट्टे करते हैं आप?
1: जी सर।
0: है कि नहीं?
1: हाँ हाँ।
0: तो कौन कौन सा अचार बनाते हैं?
1: जी सर जी, आम का, मिक्स वाला, लहसुन का, नींबू का, कटहल का,
0: आंवला कटहल का हमको बहुत पसंद है।
1: अच्छा सर जी,
0: कटहल का वही हम पूछने जा रहे थे। अगर आप कटहल ना बोलते तो मैं बोलता कि कटहल का काहे नहीं बनाते।
1: अच्छा,
0: तो गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर जी महबूबा फिल्म का सुनना है, मेरे नैना सावन भाग।
0: चलिए ये गाना सुनवा दे रहे हैं आपको हम
1: जी सर।
0: कॉल करने के लिए धन्यवाद दिलीप भाई।

0: आज देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है लाइन पर। हेलो
1: जी,
0: जी नाम बताइए।
1: चंचल पुजारी, मरी माता मंदिर नाका।
0: नाका से चंचल जी।
1: जी
0: मरी माता मंदिर कहाँ पर है ये नाका पर?
1: ये मरी माता मंदिर है नाका, रामनगर तिरहा जहाँ 14 पोस्ट परिक्रमा मार जाता है, जयसवाल मेडिकल स्टोर के ठीक सामने।
0: हाँ, देख लिया जी जी बिल्कुल, बगल में कहीं कोई आटा चक्की भी है शायद।
1: हम सेवक है, पुजारी हूँ
0: जी,
1: कोई भंडारा रहता है, सब पूजा पाठ होता है, और हमारा फूल माला की दुकान है।
0: तो
1: मालक दुकान है हमारी है
0: जी, तो भंडारा आप करवाते हैं?
1: हाँ भंडारा साल में कम 16-17 भंडारा रहता है, कोई त्योहार बच्चा नहीं, सारे त्योहार में
0: भंडारा होता है।
1: हाँ सारे त्योहार में, अरे अक्सर के आप देखते होंगे पेपर में निकलता रहता है।
0: गाना कौन सा सुनेंगे
1: भाई? ये सुना दिए अवतार के, माता जी का गाना है, माता जी का पूजा दी।
0: चलिए ठीक है चंचल भाई, गाना सुनवा रहे हैं अवतार फिल्म का। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।

0: जी हाँ, हेलो अयोध्या का सफर एकदम अपने अंतिम पड़ाव पर है, फिर भी एक कॉल हम और अटेंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो हेलो, अरे भाई ना बोलिए। हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए, कहाँ आप पहले दूर आइए रेडियो से, फोन कट जाएगा।
1: बोल रहे हैं,
0: क्या नाम है?
1: शांति देवी।
0: शांति देवी कहाँ से?
1: टिकरी गोंडा जिला।
0: गोंडा जिला, गाना कौन सा सुनेंगी?
1: भक्ति गाना तो चाहिए।
0: भक्ति गाना तो सवेरे सुनावा जात है। चलिए हम अपनी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं आप।
1: चाहिए
0: नाम शांति और काम अशांति। सुनिए, आज है मदर्स डे, माँ का दिन है आज, हम आपको माँ का गाना सुन। ये का हो गए, का हो गए, तो आवाज नहीं मिल रही क्लियर। हम आपको गाना सुनवा रहे हैं अपनी पसंद का, शांति। अब मत मचाइए अशांति और सुनिए शांति से गाना।

0: पलकों तले।
1: उसके दुश्मन हैं बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को। आप बने रहिए आकाशवाणी अयोध्या के साथ रात 11:10 तक।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हम

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के

0: संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में